एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6:05 और 5 सेकंड हुए हैं। अब सुनिए विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रही हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। 6:00 कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते। लेखन है विधि जैन का। संपादन है काजल भद्रगे का। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:30 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का। निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है ज्योति गौर का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा में

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियाँ, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियां पेश कर चुकी हूं, तो लीजिए आज सुनाती हूं भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूं। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाद्यकार थे। स्वाति तिरुनाल त्रिवांकुर प्रांत के महाराजा थे, और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाद्यकारों का। कहा जाए

जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरुनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरुनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरुनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है। तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थी लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट फिल्म के इस गाने के साथ, KL साइगल की आवाज में RC बुराल की बोल।

राज का बेटा। बैठे बैठे उसके दिल में शहर की धुन समाई, चढ़ बैठा उड़ने घोड़े पर और उसको एड़ लगाई। वो थका जब उड़ते उड़

आई। राजे के बेटे संग खेले यही उसके मन भाई। अच्छा अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाती।

0: अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज पृथ्वीराज कपूर की याद का दिन है। अभी आपने उनके द्वारा अभिनीत फिल्म रुस्तम सौराब का गाना सुना। इस गाने को गाया था सुरैया ने, कमर जलालाबादी के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती। इस फिल्म से ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से बना ये गाना बोल थे प्रदीप के।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी जो

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद 7:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम होगा सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पारिवारिक संबंधों को वरीयता दें विषय पर आज की बात के तहत चर्चा। अवध विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर राज नारायण पांडे की वार्ता। वैश्विक ऊर्जा संकट, भारत के समक्ष चुनौती। फिल्म संगीत और समाचार पत्रों की सुर्खियां तो होंगी ही। सुबह 9:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से कार्यक्रम सजीव फोन हेलो अयोध्या। 7376804090 नंबर मिलाकर आप कर सकेंगे बातें और सुनेंगे अपनी पसंद के गीत। 12:30 से अधिक लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग और दोपहर 1:00 कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम होगा अंगना, जिसमें आप सुनेंगे चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि और बचाएं ईंधन करें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग विषय पर चर्चा। आहार विशेषज्ञ अंजलि सिंह की वार्ता सुनेंगे गर्मी और लू से बचने में खाद्य व पेय पदार्थों की भूमिका। कार्यक्रम युवाणी का समय होगा 5:00। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मिशन लाइफ, सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं विषय पर होगी चर्चा। साथ में जानेंगे मैड्रिड और दिशा पांडे की बातचीत सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता रोहित यादव के साथ। शब्दावली तो होगी ही। 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से और 6:45 से कार्यक्रम होगा कृषि जगत, जल है तो कल है विषय पर होगी चर्चा। कंकुड़ा और विंडवीन की वैज्ञानिक खेती और लाभ विषय पर आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय

0: सहायक प्राध्यापक बीज विज्ञान विभाग आचार्य डॉक्टर विक्रमजीत सिंह की वार्ता सुनेंगे। रात 8:15 से कार्यक्रम होगा गीत गुंजन, 9:15 से कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM बैंड पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 7:18 हुए हैं। कुछ ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से सुनेंगे समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
4: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
3: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
5: देश के किसानों के

0: परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
0: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल।

0: कॉल है तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: कार्यक्रम भक्ति संगीत में लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये भक्ति रचना।

उदित नारायण की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये भक्ति रचना, और अब सुनिए गुलशन कुमार की आवाज में ये भजन।

0: महेंद्र चंचल की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: सुनत है सखी सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए लोकप्रियता और सत्य के लिए

0: कारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: कार्यक्रम अमृत कलश में आप लीजिए सुनिए गुलशन कुमार की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है, कुछ देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं।

0: मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम

0: जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में प्रीशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है। सिद्धारमैया ने

0: छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: कार्यक्रम की पहली पेशकश हरिहरन की आवाज में।

अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 8:30 और 8 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
2: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
2: कॉल करें 6386907006।
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
6: तमाम विविधताओं, सूचनाओं और जानकारियों को समेटे प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। श्रोताओं, पारिवारिक संबंध, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और अन्य रिश्तेदारों के बीच के वंशानुगत या भावनात्मक जुड़ाव के संबंध होते हैं। हमारे जीवन में सुरक्षा, प्यार और मानसिक संबल प्रदान करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पारिवारिक संबंधों को वरीयता देने के विषय पर ही। आप जानते हैं, पारिवारिक संबंधों में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, अन्य रक्त संबंधी यानी कि इसके बाद पति पत्नी और विवाह के बाद जुड़ने वाले सभी रिश्ते, जैसे सास ससुर, देवर ननद, विवाह, यानी सब कुछ जो भी आपसे जुड़ा है और परिवार से जुड़ा है, जिनसे आपका भावनात्मक और व्यक्तिगत लगाव है, वो सभी पारिवारिक संबंध है।

परिवार के साथ बच्चों के व्यक्तिगत और मूल्यों के निर्माण में यही संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा परिवार माहौल व्यक्ति को जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और उनकी बात ध्यान से सुनने से नजदीकियों और अपनापन देता है। सदस्यों के अलग अलग विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करने से सामाजिकता पता चलती है। परिवार की खुशी के लिए छोटी मोटी बातों पर आपसी समझ विकसित होती है। आज के परिवेश में बच्चों के जीवन में पारिवारिक संबंधों का महत्व अत्यधिक है। परिवार बच्चों के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है, जो उनके व्यक्तित्व और मानवीय मूल्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले परिवार में बच्चों को स्नेह, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। माता पिता और भाई बहनों के बीच के संबंध बच्चों को भावनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए यह आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भी विकसित होती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि पारिवारिक संबंध बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, विचारों का आदान प्रदान और समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया से बच्चे संवाद कौशल और समस्या समाधान के गुण सीख जाते हैं। वे सही और गलत के बीच अंतर करने के नैतिक मूल्यों को भी समझते हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक संबंध शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता का सहयोग और मार्गदर्शन बच्चों को शिक्षा में सफलता की कुंजी होता है। जब माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां बेहतर होती हैं। आज की भागम भाग यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी में पारिवारिक संबंध बच्चों को तनाव और दबाव से निपटने की भी ताकत देते हैं। परिवार का सहयोग और प्रेम बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए पारिवारिक संबंध बहुत अनमोल है। यह न केवल व्यक्तित्व, व्यक्ति और मूल्य का निर्माण करते हैं, बल्कि संतुलित और सफल जीवन जीने में भी मदद करते हैं। इसलिए पारिवारिक संबंधों को हमेशा वरीयता दें, महत्व दें।

0: सुरेश वाडेकर, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे अनजान का लिखा हुआ गीत। संगीत था चित्रगुप्त का, फिल्म घर द्वार। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
5: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
6: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
5: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
6: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com। AYODHYAKASHVANI@gmail.com।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, अगर किसी भीड़ में हमें रुकना पड़े और हम वाहन चला रहे हों, तो कहा जाता है कि 2 मिनट से अधिक समय यदि रुकना पड़े तो इंजन बंद कर देना चाहिए। वाहन चलाने का सही तरीका होना चाहिए, इंजन सही ट्यून होना चाहिए और इस तरह के तमाम उपाय हमें ऊर्जा संकट यानी कि जो तेल से आने वाली समस्याएं हैं, ईंधन से होने वाली समस्याएं हैं, उससे बचा सकते हैं। जी हां, आज हम आपको इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए डॉक्टर राज नारायण पांडे, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्रवक्ता, अवध विश्वविद्यालय,

0: की वार्ता सुनवाने जा रहे हैं। विषय है वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत के समक्ष चुनौती।
1: वैश्विक ऊर्जा संकट आज के दौर की एक बहुआयामी चुनौती है, जो केवल संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भू राजनीतिक तनावों, आपूर्ति श्रृंखला की जटिल बाधाओं और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक अनिवार्यताओं का एक मिला जुला परिणाम है। वर्तमान समय में ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक विकास का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संप्रभुता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत जो अपना कच्चा तेल आवश्यकताओं का लगभग 90% और प्राकृतिक गैस का 50% हिस्सा आयात करता है, इस वैश्विक संकट के केंद्र में भारत खड़ा है। यह एक ओर जहां वैश्विक बाजारों में ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति मार्ग जैसे स्वेज नहर और लाल सागर में बढ़ता तनाव भारत की राजकोषीय नीति पर दबाव डाल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह संकट भारत के लिए एक प्रोत्साहक के रूप में भी उभर रहा है। यह स्थिति भारत को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से हटकर ऊर्जा के वैकल्पिक स्वच्छ और स्वदेशी स्रोतों से जैसे हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अतः वैश्विक ऊर्जा संकट में भारत की स्थिति एक प्रभावित राष्ट्र की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक खिलाड़ी की है जो अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करने की क्षमता रख। वैश्विक ऊर्जा संकट एक बहुआयामी चुनौती है जो आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और जलवायु परिवर्तन की अनिवार्यताओं से उपजी है। भारत जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस संकट के केंद्र में है। भारत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत में कच्चे तेल का बहुत सीमित भंडार है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में चढ़ाव उतार का दंश झेलना पड़ता है। भारत के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है, लेकिन हमारे पास कोकिंग कोयले की गुणवत्ता नहीं है। हमारे पास जो कोयला है वो सामान्य श्रेणी का है, जिसकी इस्पात उद्योग को जरूरत है। इसीलिए कुल मिलाकर हमारे पास भारत में जीवाश्म ईंधन का जो सीमित भंडार है, भारत में ऊर्जा संकट का एक प्रमुख कारण यही है। ऊर्जा जरूरत के मुताबिक हमें इसके लिए कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए हमारे पास ऊर्जा की जरूरतें बहुत अधिक हैं। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और तेजी से शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण भारत की ऊर्जा मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। पारेषण और वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त निवेश से पारेषण में महत्वपूर्ण ऊर्जा हानि होती है, जो बिजली के कुशल वितरण में बाधा पहुंचाती है। कोयले की आपूर्ति और भंडारण की कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण हमें प्रत्येक मानसून के मौसम में कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है। पुरानी मशीनरी, नवाचारों की कमी और रखरखाव की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उच्च ऊर्जा खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो भारत समान वस्तुओं के उत्पादन के लिए यूरोपीय देशों की तुलना में 2 गुने से अधिक ऊर्जा खपत करता है, जिससे अनावश्यक ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। यद्यपि भारत सौर ऊर्जा, पवन और जल विद्युत जैसे नवीनीकरण स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि काफी कर रहा है, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा के कारण भारत को हाल में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जब अप्रैल 2026 में तमिलनाडु के कल्पक्कनम में स्वदेशी रूप से निर्मित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की। यह उपलब्धि भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 2रे चरण की शुरुआत है, जो भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। इस सफलता से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बड़ी उम्मीद देखी जा रही है। भविष्य में होने वाले प्रमुख लाभ पर्यावरणीय हितैषी भी होंगे। थोरियम आधारित ऊर्जा का मार्ग भारत के लिए प्रशस्त हो गया है। यह रिएक्टर भारत के पास मौजूद थोरियम, जो विश्व का लगभग 25% है, इस विशाल भंडार का उपयोग करने में यदि भारत सक्षम होता है, जो भविष्य में यूरेनियम की निर्भरता को कम करेगा और 1 किलो थोरियम से लगभग 10 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला

विश्व का दूसरा देश बन जाएगा, जिससे देश के स्वदेशी ईंधन चक्र को बहुत मजबूती मिलेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में यह रिएक्टर नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, क्योंकि यह बिना कार्बन उत्सर्जित किए 24 घंटे लगातार बिजली का उत्पादन कर सकता है, जो सौर और पवन ऊर्जा की तरह इस मौसम में निर्भर नहीं होगा। 2047 तक तकनीक के लक्ष्य से भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत में उन्नत तकनीकों का विकास हुआ है, जो विनिर्माण, इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा प्रदान करेगा। नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए कोयला आधारित बिजली का एक प्रमुख विकल्प हो सकती है, लेकिन पूर्ण निर्भरता के लिए भारत को सौर, पवन, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। भू राजनीतिक अस्थिरता के तहत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में तनाव ने तेल और प्राकृतिक गैसों में भारी अस्थिरता पैदा की है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण हॉर्मुज की खाड़ी का रास्ता बाधित कर दिया गया। वैश्विक ऊर्जा का यह संकट जो प्रमुख कारण बन रहा है, भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरत का अधिकांश तेल और गैस इन्हीं मार्गों से आपूर्ति करता था। युद्ध के कारण बाधित या मार्ग में दुनिया के कई देशों के साथ भारत के लिए भी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। वैश्विक बाजारों के अपेक्षाकृत भारत में डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में अभी कोई अधिक अंतर नहीं आया है, परंतु यदि स्थिति ऐसी रही तो निश्चित रूप से इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट की स्थिति को भांपते हुए देशवासियों से अपील की है कि वह डीजल, पेट्रोल के साथ कुकिंग गैस के प्रयोग में भी बचत करें, कारपूल करें, रेड लाइट के समय इंजन बंद रखें, जैसे कुछ टिप्स भारत के प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और भारत के ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोना न खरीदने की भी अपील की है। इसके पीछे का कारण भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को भी स्थिर बनाए रखना है। नागरिकों को विदेशी यात्रा पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस प्रकार छोटे छोटे कदम को उठाकर हम इस ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अपील ने ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्र सेवा से जोड़ा है। भारत के प्रमुख संस्थानों में ऊर्जा बचत को लेकर के 5 दिवसीय व्यवस्था संचालन की नीति अपनाई गई है और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी बहाल किया जा रहा है। आपूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखने के लिए देश में आर्थिक गतिविधियां काफी प्रभावित होने लगी हैं। महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में अचानक तेजी से आने से ऊर्जा की मांग बढ़ी है, जबकि आपूर्ति उसी गति से बहाल नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर पड़ रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विशेष रूप से मई 2026 की स्थितियों को देखते हुए ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री की अपील केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक आवश्यकता बनकर उभरी है। पश्चिम एशिया, विशेषकर अमेरिका ईरान तनाव में जारी संघर्ष और ओपेक देशों की बदली नीतियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री की अपील के कई मायने इन बिंदुओं से समझे जा। दिल्ली जैसे महानगर में लोग अब निजी वाहनों के बजाय, यह अपील उनके वैश्विक विजन लाइफ का ही विस्तार है, जो व्यक्तिगत स्तर पर अस्थायी आदतों को अपनाने पर जोर देता है। वैश्विक मंचों पर मोदी ने भारत को 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक की ओर ले जाने का जो संकल्प दोहराया है, संकट के समय उनकी यह अपील संकेत देती है कि पारंपरिक ईंधन डीजल, पेट्रोल पर निर्भरता कम करना अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य आवश्यकता है। ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने मई 2026 में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं, जिसके बड़े मायने हैं। यूएई से सीधा संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा द्विपक्षीय ऊर्जा संबंध का ही एक मिशन है, जिसे ऊर्जा सुरक्षा मिशन के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्डिक देशों के साथ सहयोग, हरित हाइड्रोजन और आर्कटिक सहयोग के माध्यम से भविष्य के ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। सांख्यिकी 2026 के अनुसार दिसंबर 2025 के आंकड़ों पर यह जो आधारित है, इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट ने भारत को अपनी ऊर्जा संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। भारत न केवल अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, बल्कि सौर और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर रहा है। हालांकि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए खनिज आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और घरेलू निर्माण
को और मजबूत करना होगा। भारत के लिए ऊर्जा संकट का समाधान केवल नए पावर प्लांट लगाने में नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने में भी।

0: है। यदि हम अपनी पारंपरिक निर्माण शैलियों और जीवन पद्धति को आधुनिक सौर ऊर्जा और तकनीकों के साथ मिला दें तो भारत एक ऊर्जा अधिशेष राष्ट्र बन सकता है।
1: अभी आप जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रवक्ता डॉक्टर राज नारायण पांडे की वार्ता सुन रहे थे। विषय था वैश्विक ऊर्जा संकट, भारत के समक्ष चुनौती। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब समाचार पत्रों की सुर्खियों पर कुछ चर्चा करते हैं।

जिले में गुरुवार को ईद उल अजहा बकरीद का पर्व हर्षोल्लास भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न संगठनों के राजनैतिक व्यक्ति भी मौजूद रहे। शहर के सिविल लाइन सहित सभी प्रमुख मस्जिदों में और ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। इस दौरान देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी गईं।

राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से कनक भवन परिसर स्थित मंदिर में अलौकिक फूल बंगले की झांकी तैयार कराई गई। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर आयोजित इस भव्य आयोजन में ठाकुर जी को विभिन्न सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित किया गया। अनुपम झांकी के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस दौरान अयोध्या गुरुवार को भक्तिरस के सराबोर से नजर आई। सीताराम, श्री राम और पतित पावन सीताराम के अखंड संकीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कई मंदिरों में आयोजन हुए।

सामाजिक संगठन की ओर से शहर के साकेतपुरी स्थित एक भवन में वैभवश्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा कार्य से जुड़े कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति और विभिन्न सेवा प्रकल्पों की बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किए गए। रामनगरी अयोध्या में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को 56,000 पौधों का बृहद पौधरोपण किए जाने का योजना बनाई गई है।

राम मंदिर परिसर में आज भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा। माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वज फहराएंगी। विभिन्न धार्मिक संगठन आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। समारोह के लिए सभी मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में सभी को प्रवेश मिलेगा।

0: समाचार पत्रों की इन्हीं सुर्खियों के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
6: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
6: कॉल करें 6386907006।
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
8: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जानें और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

कार्यक्रम की शुरुआत, जी हाँ, ढेर सारे संदेश, जैसा हमेशा होता है, ढेर सारे संदेश आपकी ओर से मिले हैं और उसमें से हमने आपके लिए निकाले हैं कुछ खास। जी हाँ, और ये फिल्म है इस बार, जी हाँ, एक बार मुस्कुरा दो, और इसके लिए हमें संदेश भेजा है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। आपकी फरमाइश के साथ शुरू है कार्यक्रम, आपके संदेश, आपके गीत।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब है फिल्म एक दूजे के लिए। हाँ, और इसकी पसंद है यानी कि इसके लिए संदेश आया है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ली नाना जी लामसे मीना लामसे तेजस जय लामसे और इनके सभी सदस्य हैं। आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ विवेकानंद। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, संजय, असु वर्मा और राजिम रजमत वर्मा। यानी आपने सुनना चाहा है कार्यक्रम में ये गीत।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में अगली फरमाइश कोमल पांडे खुशबू पांडे और अंकित पांडे की गोहानी तरबगंज जिला गोंडा से आपने पसंद किया है फिल्म गदर का ये गीत।

कार्यक्रम में अब फरमाइश हम ले रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी की। आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम में ये गीत फिल्म है नगीना।

0: Hello.
1: Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओ लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
7: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
2: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत तो मुफ्त इलाज।
2: कॉल करें 6386907006।
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
6: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
5: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
6: और साथ में अपना नाम, पता
5: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
6: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
7: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच।
0: जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। बस आपको मिलाना है हमारा नंबर वही है 7376 4090, और फिर होगी हमारी और आपके बातें, क्योंकि ये लाइव फोन इन प्रोग्राम आप मिलाते हैं फोन और फिर करते हैं हमसे बातें, सुनते हैं अपने पसंद का गीत। तो देर किस बात की हम कर रहे हैं।

0: हैं आपकी फोन कॉल्स का इंतजार, मिलाते रहिए फोन नंबर फिर से एक बार 73 76 80 40 90 एक कॉल आ गई। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है?
1: हेलो।
0: हाँ हेलो
1: सर। नमस्ते सर, मैं काजल बोल रही हूँ।
0: अच्छा काजल, आप कहाँ से बोल रहे हो?
1: सेना चौरा फैजाबाद से।
0: हाँ आपकी कॉल पहले भी लग चुकी है ना?
1: यस सर। मैं आपको एक शायरी सुनाऊं सर?
0: बिल्कुल, स्वागत है।
1: जिसने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया उसके सर पे ताज सजाऊंगा। अजी जिसने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया उसके सर पे ताज सजाऊंगा। मुझे कसम है अपनी इंसानियत से, मैं अपने बाप को राजा बनाऊंगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह। कार्यक्रम का आगाज आपने बहुत खूबसूरत कर दिया।
1: एक शायरी और?
0: हाँ बिल्कुल।
1: हम मानते हैं बदमाशी में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। अजी हम मानते हैं बदमाशी में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे मानना इतना आसान नहीं क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाई का काफिला खड़ा है।
0: यहाँ तो गड़बड़ा गया मामला, यहाँ तो कुछ बदले जैसे दबंग वोगन टाइप का मामला आ गया, ये सब ठीक नहीं है।
1: पर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: नहीं हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा?
1: क्या सर?
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा?
1: सर मुझे वो है सिक्का चलेगा मेरे नाम का।
0: कौन सी फिल्म?
1: सिक्का चलेगा मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का।
0: अब ये तो देखना पड़ेगा हमारे पास है कि नहीं आज।
1: तो सर मुझे वो वाला गाना सुना दीजिए, क्या कहते हैं आओ सुनाओ एक प्यार की एक कहानी।
0: अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ आप हमें कि एक चीज बताइए कि पिक्चर का नाम नहीं मालूम है आपको?
1: सर पिक्चर नहीं देखती, सॉन्ग ही सुनती हूँ।
0: क्यों, ऐसा क्यों है?
1: सर इसका मोबाइल नहीं है ना, छोटा वाला मोबाइल है।
0: अच्छा छोटा वाला मोबाइल है।
1: यस सर।
0: चलिए ठीक है, तो कौन सा गाना बाद में आपने बताया वो बताइए, अब उसको देखते हैं।
1: आओ सुनाओ एक प्यार की एक कहानी।
0: आओ सुनाओ प्यार की कहानी।
1: यस सर।
0: अच्छा ये भी नहीं पता है आपको किस फिल्म का है?
1: क्या सर?
0: ये भी नहीं पता आपको किस कौन सी फिल्म का है?
1: सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
0: क्यों? हेलो।
1: क्या
0: आवाज?
1: सर
0: आवाज मेरी नहीं मिल रही है।
1: अब सुनाई दी।
0: तो अच्छा कोई मतलब हमें लगता है कभी कभी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही मेरी। यस
1: सर।
0: अच्छा तो अब प्रोग्राम आप अकेले सुन रहे हो और भी लोग हैं आपके साथ?
1: मेरे पूरे फैमिली सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप करते क्या हो?
1: सर पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में हो?
1: सेवेंथ में।
0: सेवेंथ में, तब तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: यस सर।
0: और इस समय जो है वो छुट्टी चल रही है?
1: हाँ यस सर।
0: तो छुट्टी में पढ़ाई हो रही है कि बस खेल और मौज मस्ती?
1: वर्क, फैमिली वर्क भेजा है वही कर रहे थे।
0: हाँ बिल्कुल, जितने भी होमवर्क है सब समय से पूरे हो जाएं।
1: यस सर।
0: तभी अच्छा है ना। ठीक है, तो हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं, उसे सुनिए।
1: ठीक है, थैंक यू सर।
0: ओके श्रोताओं, ये बाय बाय बाय श्रोताओं, ये आज के पहले कॉलर, तो आप भी हो सकते हैं कार्यक्रम का हिस्सा। करना कुछ नहीं है, नंबर मिलाना है 73 76 80 40 90।

0: जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो चुका है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, और कॉलर फोन भी कर रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। हम आपको बता दें कि मैं हूँ आज आपके साथ विवेकानंद, और कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं राजकुमार और स्वप्निल जी। फिलहाल आज के इस खूबसूरत सफर में कौन है अगला कॉलर? हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत दूर से बोल रहे हैं आप।
1: जी जी।
0: तो क्या करते हैं परमार साहब, पहले भी बात हुई थी हमारी ना आपसे?
1: जी सर, आपसे हो गई है मेरी बात, शाम के वाले कार्यक्रम में हुई है, 9:30 बजे आता है।
0: क्या बात है, तो एक बार फिर से बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: खेती किसानी करते हैं सर।
0: तो आज मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम तो सर धूप खिली हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हमारे इधर 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिन में सर।
0: अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है फिर तो।
1: जी बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: सर? फिल्म का नाम है खुद्दार, और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है।
0: फिल्म का नाम फिर से बोलिए।
1: खुद्दार।
0: अच्छा खुद्दार, जानते हैं आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हुई है।
1: आज
0: बहुत बहुत जोरदार बारिश हुई आज।
1: और बताइयो आपको, पूरे यूपी वालों को साथी, आपके इधर गर्मी से राहत मिल गई सर?
0: हाँ गर्मी से राहत तो मिल गई, और लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि बहुत डर लग रहा था सुबह जब स्टेशन खुलना हुआ तो।
1: सर वो तो बेमौसम बारिश हो रही है, अभी तो गर्मी का वो है सर मौसम।
0: हाँ लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत जल्दी बारिश इस बार मानसून आ जाएगा।
1: जी हाँ सर, 5-6 दिन पहले बता रहे हैं हर साल से मानसून।
0: हाँ तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और आज मौसम ठंडा है तो वो और अच्छा लग रहा है।
1: जी जी सर, बहुत बढ़िया।
0: हाँ चलिए, तो फिर आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: जी सर धन्यवाद।
0: जी श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन 73-76-80-40-90। ये जैसे मतलब बार बार हम कहते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, बस आप फोन मिलाएंगे थोड़ा सा हो सकता है लाइनें बिजी रहती हैं, क्योंकि आपके और बहुत से साथी फोन मिलाते रहते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए, मिलाते रहिए फोन।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। जी हां श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
6: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा।
5: नहीं मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
7: अच्छा वेरी स्मार्ट।
8: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान।
6: हाँ हाँ क्यों नहीं।
8: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
9: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: लाइफ

0: प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की अयोध्या की। इनसे एक कॉलर लाइन पर है, इनसे बात करते हैं, फोन मिला रहे हैं, बहुत देर से इनकी कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आपकी कॉल लग गई। हेलो हेलो, लगता है इनसे बात नहीं हो पाएगी। शुरू में मिलाते रहिए, नंबर वही है 73-76-80-40-90। जी एक कॉल फिर आ गई। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रहा है?
1: नमस्ते,
0: कौन बोल रहा है
1: सर? आप ठीक हो?
0: अरे बहुत अच्छे हैं हम, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: सर हम कचहरा बाजार से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, तो अपना नाम भी बताइए। आवाज कट रही है आपकी। हेलो
1: सर, हमें गाना सुना दीजिए, दिल का क्या कसूर, मिल लेती तो कोशिश
0: करें। हाँ हाँ ठीक है, दिल का क्या कसूर, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता दीजिए ना कि आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है? कुछ नाम हम सुन ही नहीं पाए हम।
1: सर हम सेखनपुर कुचेरा बाजार से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, और नाम भी बताइए अपना।
1: सर हमारा नीता नाम है।
0: तो आप प्रोग्राम सुनते हो कि नहीं?
1: हाँ सर डेली सुनते हैं, बहुत फोन लगाते हैं, फोन लगता ही नहीं है।
0: तो
1: सर डेली फोन लगाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हिराम जाते हैं, आपको फोन नहीं लगता है।
0: अच्छा, पहली बार आपकी कॉल लगी कि इसके पहले भी लगी है?
1: सर 10 महीना बाद लगी है, और एक दिन और लगी थी, आप फोन उठाए ही नहीं, कोई उठाया ही नहीं। सर हम बहुत परेशान थे, आपका फोन लग नहीं रहा, हम भी सोचे आज की आवाज नहीं ली, आपसे बात करें।
0: नहीं ऐसा नहीं है कि कोई उठाता नहीं है फोन, बस नहीं मिल पाया होगा तो इस वजह से बात नहीं हो पाई होगी।
1: डेली सुनते हैं, डेली सुनते हैं, मैं सोचती हूँ रोज जाए हम भी बात करने।
0: अच्छा, तो कौन सी फिल्म कौन सा?
1: आपने सुनते हैं सुबह, आपने बात करते हैं, वो अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
0: अच्छा,
1: कल आए थे वो भी बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी जी, तो कौन सी फिल्म का गीत आपने बताया, दिल का क्या कसूर?
1: घर पर रहते हैं, घर का काम करते हैं, स्कूल में खाना बनाने जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मैं पूछ रहा हूँ फिल्म आपने कौन सी बताई थी?
1: सर दिल का क्या कसूर।
0: इसका कौन सा गाना?
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा करूंगा।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तो और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: सर हम हमारे हस्बैंड सुन रहे हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग सुन रहे हैं।
1: बच्चे तो हमारे मायके छोटा वाला गया था, बड़ा वाला तो सर बाहर था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: सर हमारे हस्बैंड से बात कर लीजिए।
0: करा दीजिए, करा दीजिए
1: सर, हमारे हस्बैंड से बात कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: सुधराम नाम है सर।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप? हेलो हाँ, आपकी आवाज कटने लगी। आपकी आवाज कट रही, हमें सही से मिल नहीं रही है। चलिए फिलहाल हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर दिए हैं, सुनिए है।

0: श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अड्डा केंद्र से। एक कॉलर का फोन आ रहा है, बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है?
1: आरोही।
0: आरोही
1: हाँ।
0: कहां से बोल रहे हो आप? आरोही
1: सुहावल।
0: अच्छा, तो क्या करते हो आप आरोही?
1: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हो?
1: सर फर्स्ट
0: में। क्या बात है।
1: यस सर।
0: तो सब टेबल वगैरह सब याद है आपको कुछ?
1: यस सर।
0: कौन सी याद है, 2 की 3 की 4 की, कौन सी याद है?
1: सर 5 तक याद है।
0: 5 तक? ओफो। आज कौन सा गाना सुनना है आपको आरोही?
1: तेरे संग प्रीति लगाई सजना।
0: ओहो, क्या बात है। अच्छा एक चीज बताओ, 5 5 की सुना दोगे आप हमें टेबल?
1: यस।
0: सुना दो फिर, सुना दो बस, हम आपके लिए गाना बजा दें।
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: और कोई पोयम भी याद है?
1: यस सर।
0: सुना दो एक पोयम।
1: सर पोयम का नहीं याद है सर।
0: नहीं याद है, कविता कोई हिंदी की?
1: इलेवन का याद है।
0: इलेवन का सुना दो।
1: Yes,
0: सुना दो।
1: 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया गुड।
1: क्या?
0: बहुत अच्छा
1: क्या
0: लगा
1: क्या?
0: हमने कहा शाबाश। अरे हमने कहा शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया, सुनिए।
1: यस।

श्रोताओं, फिलहाल ये जो घड़ी है ना, टिक टिक टिक टिक चलते चलते सफर पूरा कर ही देती है। और इसी तरह आज का सफर भी हेलो अयोध्या का हो गया पूरा। दीजिए विवेकानंद को इजाजत इस कार्यक्रम से, और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कंट्रोल रूम से हमारे साथ आज थे स्वप्निल और राजकुमार जी। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: संबंध। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू

0: रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी।
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी।
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
0: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें एक कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता

लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था।

0: वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे

0: उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के

न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी।
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी?
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 को हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के पंकज सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022286702888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशा लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति

0: श्री प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदित सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा।

0: मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सुनिए,
3: कहिए, कहिए,
2: सुनिए।
4: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: कार्यक्रम लोक रंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं लोक गीतों को, तो चलिए देर ना करते हुए सुनवाते हैं आपको पहला लोक गीत। ये लोक गीत आप सुन रहे हैं भावना शर्मा की आवाज में।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ। अगला गीत आइए सुनते हैं चंदमौली और साथियों की आवाज में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। अगला विवाह मेहंदी गीत सुनते हैं किरण पांडे की आवाज में।

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। अंतिम गीत आइए सुनते हैं पद्मा गिडवानी और साथियों की आवाज में।

0: पद्मा गिडवानी और साथियों की आवाज में गाए गए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं संपन्न होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। आपके साथ है आपकी दोस्त मेधा। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने आपकी फरमाइश पर, जो गीत आपने पसंद किए और आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के जरिए हम तक पहुंचाए। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि पहली फरमाइश किस गीत की आई है और ये फरमाइश हम तक किसने पहुँचाई है। पहले गीत की फरमाइश हम तक आई है मोहम्मद फारूक शेख की, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, बीआई धाकड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से, बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, बबलेश पवार पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, अंकुश अरोरा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, अशोक साहू कवर्धा छत्तीसगढ़ से और विक्रम मालवीय मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद रतलाम मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। ये गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है हमसाया। गीतकार है शहवीन रिजवी और संगीत है ओपी नैयर का।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में अगली फरमाइश हम तक आई है अरुण कुमार मालवीय की। बड़ी कैबी चौराहा वाराणसी ने इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं गजमन येले सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, ओम प्रकाश राय डुबिहा निवादा गाजीपुर से, पुंजा जी नावकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, वेद प्रकाश मिद्दा नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से, मोहम्मद यासीन अनजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से, नारायण लाल साहू अटल रेडियो श्रोता संघ साकरा से, कमल साहनी रायमगढ़ कैंट झारखंड से, आफताब अंसारी शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली कवर कॉलोनी बडवा खरगोन मध्य प्रदेश से और दिलशाद हुसैन ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है नीलू मेघ की, राजधानी रायपुर से इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है।

साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, सुरेश गगनेचा जलालाबाद वेस्ट से, फागुराम संबलपुर कांकेर से, फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, जगमोहन सिंह प्रजापति जिला बागपत, जाकिर मंसूरी मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत को लिखा है अख्तर रुमानी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अगली फरमाइश हम तक आई है मसरूर हसन कुमार खेड़ा से सहारनपुर से, बीके हितेंद्र पीबीएल असम से इस गीत को सुनना चाहते हैं। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं अशोक सिंह मध्य प्रदेश धनवंतरी नगर जबलपुर से, प्रकाश बोरगांवकर सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से, रणधीर गुप्ता ओखाला संगम विहार दिल्ली से, दातर सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, उत्तम सिंह जंघेल धमदा ग्राम सुखारी कला से, हरजिंदर चिंदा नथाना पंजाब से, सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, आसिफ अली बागपत उत्तर प्रदेश से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से और सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आइए जानते हैं कि अगले गीत की फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक पहुंची है संजय ढींगिया की तरफ से बागपत उत्तर प्रदेश से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं रमेश चौहान सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, बालकरण वर्मा ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अनिल जैन मालियान सरधना मेरठ से, राजकुमार रवार सादुल शहर राजस्थान से, राजकुमार डूडी गांव परासी जिला हिसार से, मोहम्मद फरमान जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, माखन वर्मा आदर नंद घाट छत्तीसगढ़ से, कृष्णपाल सिंह चौहान कॉलोनी सनावत से, राष्ट्रपाल गजभिये छत्तीसगढ़ डोगर गांव से, ज्ञान भूषण शर्मा रावर करनाल से, देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उघाटी बदायूं से, जगदीश धाकड़ ग्राम हिंगड़ी से और माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म सूर्या से। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है श्री कृष्ण बाथे की, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं कमल सिंह मजनू का टीला से, राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, शाहजी बोध के हिंगोली महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर बुलढाणा से, विनोद बरसा खोखरावाली से, नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से, बनवारी जयपाल श्रीगंगानगर राजस्थान से, नंदकिशोर घाटे वीर शहर महाराष्ट्र से, लक्ष्मण सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ जिला कोराबा से, वासुदेव भगवान बड़े बुलढाणा महाराष्ट्र से, रविंद्र दास किशनगंज बिहार से, नसीब मोहम्मद छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से, राघव बाघेल लगन पडैया छत्तीसगढ़ से, राजेंद्र नारंग बठिंडा रोड मंडी डबवाली से और आर कुमार वेडिंग खेड़ा पंजाब से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आप सुनेंगे फिल्म बॉबी से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। गीत को लिखा है शैलेंद्र सिंह ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: और भाई साहब क्या हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कि अगली फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है दिनेश वर्मा की रिंगनी छत्तीसगढ़ से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं दिलावर खान श्रोता रघुवीर नगर से, रजाक मोहम्मद हनुमानगढ़ राजस्थान से, राधे श्याम शर्मा गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से, आनंद जोशी प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से, बालकृष्ण गांव नंगल खेड़ा पंजाब से, सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर से, सोमदत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सुभाष गुडारा हीरा वाली फाजिलका पंजाब से, शुभ चंद्र बजाज राहुल बॉम्बे कोल्हापुर महाराष्ट्र से, ओम भगरिया गांव बंदीवाला फाजिलका से, आरसी कामदे जवाहर नगर दुर्ग से और हुकुम कर्माकर मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है याराना। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत है राजेश रोशन का।

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आइए जानते हैं कि अगली फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है राधा नामदेव की, सहारनपुर से। इस फरमाइश को इन्होंने हम तक पहुंचाया है। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं नंद कुमार ठाकुर, चरोदा बार नवापारा बलौद बाजार छत्तीसगढ़ से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, विनोद मूरत उज्जैन बोरखेड़ा से, अशोक कुमार जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, राजेश सबले सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, मोहम्मद इंतजार भोजपुर सहारनपुर से, तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसीदास पंचकुला चंडीगढ़ से, सोमेंद्र यादव शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, नरेंद्र सुथार राजस्थान से, सुरेंद्र बौद्ध मिल्कीपुर से, रामचंद्र मखीजा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से और सतवीर सिंह बिजारनिया गांव खरिया धाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

ये गीत आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। गीत को लिखा है फैज अनवर ने और संगीत है जतिन ललित का।

दोस्तों बात तो सही है कि दिल है कि मानता नहीं, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है और इस खूबसूरत कार्यक्रम से अब अलविदा लेने का समय। आज के इस मुलाकात में आपने जो प्यार, अपनापन और अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि गीतों की खुशबू, बातों की गर्माहट और एहसासों की ये मिठास आपके दिल को देर तक मुस्कुराने की वजह देगी। समय हो गया है विदा लेने का, लेकिन ये दूरी बहुत देर की नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ और ढेर सारी खुशियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त मेधा को। नमस्कार।

रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि,

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

0: Marciano, hermano.
1: कार्यक्रम गीतांजलि में पहला भजन आइए सुनते हैं अनूप जलूटा की आवाज में।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर, जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन

0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
3: कार्यक्रम में अगला भजन आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

0: जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें

0: वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए

0: देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

0: छियासठ आठ सौ सतहत्तर तीन सौ सैतालीस।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: हाजिर है आज आपके सखी मीतु आप सभी के मन भावन मन पसंद कार्यक्रम अंगनामा। आप सभी का हमारा प्यार भरा नमस्कार। देखो सखी सहेली, जाना थी कि आज है 29 मई और आज के दिन हमारे सभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जो है पुण्यतिथि मनावत है। तो भाई उनका हमारे सभी की वारी से विनम्र श्रद्धांजलि। जाना थी सखी, चौधरी चरण सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहन और वे किसानन के सच्चा मसीहा भी रहन हैं। वे हमेशा से ही किसान होए चाहे मजदूर होए और गांव गरीब के भलाई खातिर काम किए रहन। उनका यही मानव रहा कि जब तक गांव मजबूत ना हुई तब तक देश की तरक्की ना हुई। तो भाई आज़ादी के बाद वे ग्रामीण इलाकन और खास के कि किसान खातिर कईयों बड़ा काम जो है वे किए रहन हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन सुधार के काम में भी बहुत योगदान दिन। और सखी सहेली यही नहीं, इस सब योगदान खातिर उनके जन्मदिवस के दिन का याद करत है। भाई 23 दिसंबर के दिन उनके जन्मदिवस होते, उस दिन का याद किन जाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। सखी सहेली आज उनकी पुण्यतिथि के दिन पे हमने सभी संकल्प लेना कि हमने सभी भी अपन देश हित की ताए काम करत रहा। आज देश दुनिया में तमाम मेर के देखा संकट छावा है और इस समय में हम सभी का आपन देश की ताए और देश हित की ताए काम करब जरूरी होता है। तो सखी बात करब आज हम ईंधन का बचावे और एकरेताए भाई करे का है कि हमरे सभी का यही प्रयास होए के चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमरे सभी सार्वजनिक वाहन के उपयोग करी। यानी कि जब भी हम बाहर निकली यसना हुए कि अपन स्कूटी, अपन बाइक या अपन कार से ही जाइए अकेले, कोशिश करी कि जो है जो ट्रेन हो, बस हो या जो है मेट्रो जैसन चलत है वो है या ऑटो है, जीवन कईयों लोग एक साथ बैठ के जा सकित है, सफर कर सकित है, ऐसा गाड़ी में जो है हमने सभी सफर करी। और भाई आज के समय में देखो कितनी गाड़ी बढ़त जाता है, इसे होते का कि धुआं हमारे पर्यावरण का भी बहुत नुकसान पहुँचावत है और जगह जगह देखा जाम तो लागिन जाते है। और यही लिए भाई हमारे सभी के ज़्यादा से ज़्यादा बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, सार्वजनिक वाहन के प्रयोग करे के चाहिए। और देखो एक सब करे से कईयों मेरे के फायदा भी होते भाई, हमारा समय भी बचत है, पैसा भी बचत है और साथ ही साथ अपन पर्यावरण भी सुरक्षित होते है। और ऐसे भाई जैसन कहन की जाम भी कम लागत है, साथ ही जो है पेट्रोल डीजल भी बचत है और प्रदूषण भी कम होता है। भाई कम प्रदूषण से हवा साफ रही तो हमारी सेहत भी ठीक रही और ये कदम हमार आवे वाली पीढ़ी की ताए एक अच्छा कदम हुई। तो भाई हम सभी मिलके बस संकल्प ले और यही कही ना कि सार्वजनिक वाहन का अपनावा, ईंधन बचावा और पर्यावरण भी। और देखो सकी जहाँ तक बचावे के बात होता है तो बता दे कि भाई ये स्थिति कितनी गर्मी है, लू है, ऐसे बचे की ताए भी हमारे लोगों का जुगाड़ करत रहे के चाहिए। भाई गर्मी के मौसम आवत ही मने धूप लू पसीना से परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा में हमारे सभी के खान पान के जो भूमिका है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये स्थिति भाई शरीर का ठंडक दे

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।

0: वाला और गर्मी से बचाव वाला ही खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ लेकर चाहिए। तो सखी सहेली बताए दी कि आज ऐसा ही एक जानकारी लाए ही गर्मी व लू से बचाने में खाद्य व पेय पदार्थों की भूमिका बताओ थी। अंजलि सिंह बहनी उनसे बातचीत किए हैं आरती पांडे बहनी, तो चलो सुना जाएगा।
1: श्रोता बहनों, दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ ही रहा है और ऐसे में चाहे बड़े हों, छोटे हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, सबको अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि सिंह जी, आप आहार विशेषज्ञ भी हैं। गर्मी से बचने के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों की भूमिका इस बारे में जानकारी देंगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि गर्मी के समय हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए।
2: गर्मी के समय में हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए, बहुत अधिक तेल मसाला उसमें ना हो, तला भुना हुआ ना हो, इस प्रकार का आहार हमें प्रयोग करना चाहिए और उसमें जो पानी की मात्रा है, वाटर कंटेंट है, वो भी प्रचुर मात्रा में हो।
1: तो जैसा आपने कहा कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, बाजार में सब्जियां हैं, फल हैं जो पानी से भरी पूरी रहती हैं, तो हमें उसको लेना चाहिए ना। आपके कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, जैसे तरोई हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, उन्हें पसंद नहीं होता, फल भी नहीं खाना चाहते हैं। तो ऐसे में किस तरह से हम बच्चों को दें कि ताकि उनके शरीर का जो पानी का मात्रा है वो बराबर रहे।
2: ये जो हमारी प्रकृति है, ये हमें सारी चीजें आवश्यकता के अनुसार देती है। जैसे जब जिस सीजन में जैसे फल खाने चाहिए, आप देखिए प्रकृति उस समय पे वही चीजें देती है।
1: जी,
2: जैसे कि अभी गर्मियों के सीजन में आप शायद मटर की रेसिपीज बना के खा लें तो आपको उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में क्योंकि पानी की अधिक आवश्यकता है तो पानी वाले फल सब्जी अपने आप मार्केट में आपको दिखने लग जाते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जो बच्चे हैं वो फायदे नुकसान को ना समझ के सिर्फ अपनी पसंद की चीजें खाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम उनको कुछ ऐसे डिश बना के दे सकते हैं जो कि उन्हें फायदा भी करे और उनका जो टेस्ट है वो भी उन्हें मिलता रहे। जैसे कि अगर वो फल नहीं लेना चाहते तो फलों के जूस हैं या फलों के शरबत हैं, नींबू पानी का शरबत है, इस तरीके की कुछ चीजें हम उन्हें दे सकते हैं जिससे प्रचुर मात्रा में उन्हें विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाए और साथ ही साथ जो पानी की मात्रा है और हमें गर्मी में जिन तत्वों की जरूरत है वो भी उनके शरीर में पहुंचती रहे।
1: अच्छा डॉक्टर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जैसे अधिकतर लोग कहते हैं पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है हम पानी पी रहे हैं, तो क्या सादे पानी से हमारे शरीर की जो आवश्यकता है जिसमें मिनरल्स होते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं, कि हमें उसकी जगह नींबू पानी पीना चाहिए या कुछ और ऐसा ड्रिंक जिससे हमें फायदा मिले?
2: सामान्य मौसम में सादा पानी काफी है, लेकिन क्योंकि गर्मियों में हम जानते हैं कि हमें पसीना भी काफी होता है और शरीर से पानी का लॉस भी काफी होता है, तो जो पानी का लॉस होता है उसके साथ में बॉडी से कई सारे मिनरल्स भी लॉस होते हैं, तो इसकी पूर्ति के लिए हमें और रिफ्रेशमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ उसमें मिला के पी सकते हैं। जैसे कि हम पुदीना का प्रयोग कर सकते हैं, गर्मियों में पुदीने का शरबत बना लें, नींबू का शरबत बना लें, बेल का शरबत बना लें, तो ये सारी चीजें गर्मियों में बहुत अच्छी होती हैं और पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं।
1: जी देखिए, गर्मी में जैसे बीपी के, शुगर के मरीजों के लिए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है?
2: जो बीपी और शुगर के पेशेंट हैं उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब तक बहुत आवश्यकता ना हो कड़ी धूप में बाहर ना निकलें। अगर किसी छोटे मोटे काम के लिए निकल रहे हैं तो वो सुबह या शाम में निकलें, लेकिन अगर वो वर्किंग हैं, उन्हें काम पे जाना ही जाना है, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे कि वो कभी खाली पेट ना निकलें, अपनी बीपी शुगर की दवाइयां स्किप ना करें। गर्मियों के समय में बीपी शुगर फ्लक्चुएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि गर्मियों में हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी दवाइयों में कोई लापरवाही ना हो, हमारे खाने पीने में लापरवाही ना हो, हम खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले हम अच्छी मात्रा में पानी पिए, अपने साथ एक वाटर बॉटल साथ में रखें, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: डॉक्टर, जो घरेलू महिलाएं हैं वो तो अपना ध्यान रखती ही है क्योंकि घर में रहती है, अपनी जरूरत के हिसाब से पानी पीती रहती है, चीजों का सेवन करती रहती है। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने सेहत का किस तरह से ध्यान रखें।

गर्मी में। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास समय का काफी शॉर्टेज होता है कि वो अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि उसी उतने समय में उन्हें परिवार की व्यवस्थाएं भी ठीक रखनी होती हैं। तो उनके लिए मैं उन्हें सलाह दूंगी कि जो वो हैंडबैग कैरी करती हैं उसमें वो जरूर ऐसी कुछ आवश्यक चीजें रखें जो कि अगर वो घर से निकलने से पहले नहीं ले पा रही हैं तो वो जहां पे कार्यरत हैं वहां जाकर के उन चीजों का प्रयोग कर सकती हैं। जैसे कि आप अपने हैंडबैग में थोड़े से ड्राई फ्रूट रख सकती हैं, एक वाटर बॉटल रख सकती हैं, नींबू रख सकती हैं, या फिर नींबू से बने हुए पेय पदार्थ आप बॉटल में कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है दही है एक कप या एक टिफिन में, ये चीजें कैरी कर सकती हैं।

0: दही है एक कप या एक टिफिन में, ये चीजें कैरी कर सकती हैं। लेकिन इनको भी सलाह यही है कि जब आप घर से निकलें तो आप खाली पेट ना निकलें, आप थोड़ा कुछ नाश्ता और प्रचुर मात्रा में पानी पीकर ही घर से निकलें। इससे आपको गर्मी से हीट स्ट्रोक, चक्कर आने, इन सब चीजों के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर, कितना ठीक है इस मौसम में चाय कॉफी का सेवन करना?
0: मौसम के अनुसार अगर बात करें तो बहुत अधिक गर्म पेय पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है गर्मियों में, लेकिन अगर किसी को उसकी आदत में है तो वो एक कप सुबह में या एक कप शाम में इस प्रकार से ले सकते हैं। बहुत अधिक प्रयोग इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में एसिडिटी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
1: जी,
0: तो आप गर्मियों में अगर अधिक गर्म पेय पदार्थ पी रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि चाय कॉफी का लिमिटेड प्रयोग करें और ठंडी चीजें और पानी वाली चीजें का ज्यादा प्रयोग करें। और कॉफी का जो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं गर्मियों में, उन्हें डिहाइड्रेट होने के चांस ज्यादा होते हैं। कॉफी से जो वाटर लॉस है बॉडी से, कॉफी डायूरेटिक होती है तो वाटर कंटेंट को बॉडी से फ्लश आउट करती है। तो बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें, आप एक कप दिन में ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लें।
1: डॉक्टर, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस सीजन में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको खाने में बहुत परहेज रखना चाहिए कि बाहर की चीजें, तली भुनी चीजें, बहुत ऑयली चीजें वो ना खाएं, क्योंकि इस सीजन में कई प्रकार के भोजन में जो होते हैं बैक्टीरिया और ऐसी चीजें उत्पन्न होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग और उल्टी, दस्त ये जल्दी क्रिएट कर देते हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि हम साफ सुथरा और ताजा भोजन करें, पानी का अच्छी मात्रा में प्रयोग करें, मौसमी फल का प्रयोग करें, खीरा, ककड़ी, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करें, और साथ में नारियल पानी है, मट्ठा है, दही है, इन चीजों को लेते रहें।
1: अक्सर क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में घर से निकलते समय, जैसे मान लीजिए हम नहाए और तुरंत कपड़ा पहने और ऑफिस के लिए निकल गए, लू के मौसम में क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर?
0: ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप नहा करके और तुरंत ही घर से बाहर, और खासकर जब तेज धूप हो तो बिल्कुल भी ना निकलें। आप नहाएं और कुछ ना कुछ नाश्ता अवश्य लें।
1: जी जी,
0: अगर आप नाश्ता नहीं ले रहे हैं तो आप जैसे बेल का शरबत है, लस्सी है, सत्तू का घोल है, इस तरह की चीजें भी आप ले सकते हैं, जो आप पेट भर के कम दो गिलास पी लें और उसके बाद आप घर से निकलें।
1: डॉक्टर, कुछ ऐसे पेय पदार्थ बताइए जो आसानी से बन जाए और जो बाहर जा रही हैं महिलाएं हैं या पुरुष हैं तो वो इसको अच्छे से कैरी करें और फिर उसको इस्तेमाल करें ताकि उनका शरीर जो है पानी की कमी से बचा रहे।
0: ऐसे आसान पेय पदार्थों में आप सबसे सरल और सबसे उपयोगी है नींबू का शरबत। नींबू पानी का आप प्रयोग करें, आप बेल का शरबत प्रयोग कर सकती हैं। सौंफ जो होती है वो हमें बहुत ठंडक प्रदान करती है, तो गर्मियों में सौंफ और मिश्री इसको मिला करके आप इसका शरबत बना सकती हैं। आप गन्ने के रस का प्रयोग कर सकती हैं, आप मट्ठा और लस्सी इसका भी प्रयोग कर सकती हैं। सत्तू का घोल भी गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। तो घर से निकलने से पहले अगर आप सत्तू का शरबत भी पीते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
1: हाँ हाँ, कहते हैं ना इसकी तासीर ठंडी होती है, शरीर ठंडा रहता है। अधिक गर्मी में किस प्रकार के भोजन से हमें बचना चाहिए?
0: अधिक गर्मी में हमें मैदे से बनी चीजें, तली हुई चीजें, बासी रखा हुआ भोजन या जो बहुत देर से खुला रखा है, इस प्रकार का भोजन, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ताजा बना हुआ, जो शुद्ध हो, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार नहीं हो।
1: डॉक्टर, आजकल क्या है कि हर कोई, चाहे शहर हो या गांव हो, हर कोई जो है सुविधाजनक जीवन जी रहा है ना, और सबके घर में कूलर एसी रहते हैं, तो एसी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें लगता है कि हम एसी में बैठे हैं तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रहेगी, वो पानी की कमी से नहीं पीड़ित होंगे, लेकिन क्या सच है इसको बताइए आप श्रोताओं को।
0: एसी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी पानी की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि बाहर निकलने वाले व्यक्ति को है। अगर वो पूरे दिन पानी नहीं पी रहे हैं तब भी उनके शरीर से वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि यूरिनेशन तो उनको हो रहा है, जो प्रक्रिया शरीर की है वो चल रही है। तो ऐसे लोगों को भी पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। और एसी में रहने से आपके कमरे का, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी का प्रभाव कम हो जा रहा है। तो आप प्रचुर मात्रा में पानी पिए। आप ये ध्यान रखें कि एसी से अगर निकल के आपको कहीं जाना है तो उससे लगभग 15 मिनट पहले एसी को आप बंद कर दें। तुरंत एसी से

0: धूप में ना निकले जी, जी. इससे चक्कर आने के, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी टेम्परेचर जो चेंज होता है सडन, उससे तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती
1: जी, जी.
0: तो आप ये कोशिश करें, सेम ऐसे जो लोग एसी कार का यूज कर रहे हैं वो भी कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से 10 मिनट पहले ही एसी को बंद कर दें, शीशा डाउन कर दें, थोड़ा नेचुरल हवा आने दें, उसके बाद वो गाड़ी से निकले.
1: डॉक्टर, चलते चलते आप इस विषय में हमारे सखियों को क्या बताना चाहेंगी?
0: चलते चलते मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अच्छे से भोजन करें, पेट भर के भोजन करें, और रात्रि में बहुत हल्का भोजन लें. खीरा, ककड़ी, मौसमी फल, इन चीजों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें. बाहर खाने से बचें और जितना हो सके घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही करें गर्मियों में.
1: गर्मी व लू से बचने में खाद्य व पेय पदार्थों की भूमिका, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
2: देखो सखी, सुना गया अभी गर्मी व लू से बचने में खाद्य व पेय पदार्थों की भूमिका विषय पर बताओ तो रही अंजलि सिंह बहनी, जो उनकी आहार विशेषज्ञ भी हैं, और इनसे बातचीत कर रही आरती पांडे बहनी. बहनी लोग, हमारे लोग का इनके जो उन बताए गए बतावा गया सुझाव है, उससे जो है जरूर अपन फायदा लेकर चाहिए. और देखो सखी, बात बत कही तो आगे और चली, मगर छोटे से अंतराल के बाद.
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की.
4: ओह लवली, वेल डन.
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड.
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से.
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ.
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो.
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी.
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.
10: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
11: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे. अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार.
10: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
11: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें.
12: लोक सुरमाला, आपकी पसंद.
2: तो सखी, एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ आपके सखी मीतू. और अब भाई, समय हो चुका है एक बढ़िया सा गीत सुनने के. चलो सुना जाए ये गीत कोठे ऊपर कोठे, उषा अग्रवाल के आवाज में.

तो सगी सहेली गीत के बाद चलो चला जाए अपने घरेलू सुझाव की बारी। देखो ना सखी, गर्मी के मौसम आवत ही तेज धूप, पसीना और चिपचिपाहट ना हमारे त्वचा का बल्कि हमारे बाल की चमक भी कम करत है। बोला देखो चिंता के कोनो बात ना है, कहें कि आज हम बताओ कुछ ऐसा नहीं आसान घरेलू सौंदर्य टिप्स। तो सबसे पहले तो बात करी थी त्वचा का, अगर ठंडक देखो ना और का ताजा रखा है कोई, तो हमें सबका खीरा सबके पास होते, खीरे के रस निकाल ले गुलाब जल में मिलाए के दिन भर में कम से कम एक बार चेहरा पे जरूर लगावे, इससे चेहरा का ठंडक मिलत है और अच्छा लगत है। और अगर पसीना और तैलीय त्वचा होत है तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाए के लगावे से चेहरा का जो अतिरिक्त तेल होते ना वो कम होते है और त्वचा जो है खिली खिली लागत है। और अब बात करी थे भाई धूप से त्वचा काली पड़ जाते हैं, हम बाहर निकले थे तो धूप से त्वचा जब काली पड़ जाए तो टमाटर की रस में दही मिलाए के चेहरा पे 10 मिनट लगाए रखे और एक बाद वो का धो दी, इससे त्वचा का ठंडक भी मिलत है और चेहरा के कालापन भी दूर हो जाता है। और अब बात करी थे बाल के, तो भाई हफ्ता में 2 बार नारियल तेल लगावे अपने बाल में और बाल का धुल ले, और तेज धूप में जब निकलत है तो वह समय जो है सिर पे दुपट्टा हो या टोपी हो उसे अपने बाल का ढक ले। और इकरे अलावा न सकी खूब पानी पिए, कहें से कि अंदर से स्वस्थ शरीर ही जो है चेहरा पे असली चमक लावत है। तो सखी से लिए ऐसा ही जानकारी के साथ ही आगे भी हम मिलत रहा, लेकिन ओकरे पहले जाए से पहले सुनवाई थे अपनी सखियन का ये गीत।

0: तो सखी सहेली गीत ऐसा ही बजत रहा है, आप सभी सुनत रहे हैं, लेकिन ओकरे पहले अपने सखियन अपने श्रोता लोगन से यही कहा कि कार्यक्रम का सुनने के बाद उस पर अपन प्रतिक्रिया जरूर दें। कहे कि कार्यक्रम तभी नीक हुई जब आपके प्रतिक्रिया मिली, और कार्यक्रम में प्रतिक्रिया जरूर लिखें, साथ ही साथ ही लोक सुरमाला कार्यक्रम सुनें और फरमाइश करें। एक आप फेसबुक पे पेज के अंगना पोस्ट पे जाए कि हर बुधवार का अपन फरमाइश कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे नंबर है 830-321-9911 पर भी ANGA कैपिटल लेटर में लिखें और अपन फरमाइश करें। तो सखी सहेली कार्यक्रम में हमेशा शामिल रहें, अपन फरमाइश भेजत रहें, तो अगले कार्यक्रम में नीक नीक गीत गौनी और जानकारी के साथ फिर मिला जाए। तब तक के लिए मीतू का देवनमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जुड़ते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते।

0: बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहां से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहां से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाकों है ना, वही बनाती हूँ ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद का
1: नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर? अब क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है ओ यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।

0: जी मैम, थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
1: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
0: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
1: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
0: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
1: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
1: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
0: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
1: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम।

0: घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
1: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
0: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
1: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
0: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
1: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते
0: हैं। सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूले रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी।
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ।

0: थी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
1: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
0: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
1: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
0: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
1: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
0: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
1: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
0: हाँ।
1: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
0: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
1: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
0: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
0: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
1: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
0: जी
1: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
1: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
0: रेडियो तो पूरे ही

0: पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है। अच्छा। साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना, ये बहुत जरूरी होता है, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी।
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ, अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप

0: क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से ये बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है। और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए वाला गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी,
0: था
1: जी। मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी।

0: बाद सफलता मिल ही गई।
1: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
0: जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ, वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
1: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
0: जी।
1: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
0: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
1: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
0: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
1: जी,
0: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
0: जी।
1: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
0: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से
1: जी,
0: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
1: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
0: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
1: रफी साहब का गाया हुआ।
0: जी जी जी,
1: हर्षिता आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02224662 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का। वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

और गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

शांत भाव का है और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे

उनकी बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए, हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा, हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला, कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी।

झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो

घर एकदम खाली सा पड़ा था, दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं

केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन, एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंख

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून।

0: की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो की जवानी जो

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: मीडिया वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिन भर की भाग दौड़ के बीच हो जाइए थोड़ा रिलैक्स और कर लीजिए रेडियो के वॉल्यूम को फुल, क्योंकि आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेकर आ गई है मजेदार संगीत और बातें। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, और बढ़िया हो भी क्यों ना, जब रखते हैं हम आपका इतना ख्याल ढेर सारी बातों और मनोरंजन के साथ। तो क्यों करनी देर, चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि क्या होगा आज खास आपके लिए कार्यक्रम युववाणी में। चर्चा में बात होगी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मिशन लाइफ सतत खाद्य प्रणाली की। चलेंगे रेडियो तरंगों के माध्यम से मैड्रिड सेगमेंट स्थान में। साथ ही आज ही शुक्रवार जब होती है वो कैप्स की भरमार, जी हाँ सेगमेंट शब्दावली में। और सुनिए हमारी खास बातचीत आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता रोहित यादव से, जिनसे बात किया है हमारी सहयोगी दिशा पांडे ने। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि होंगे गीत संगीत, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आपके आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक पहुंचे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। तो बिना देर किए फटाफट से चलते हैं अपने पहले सेगमेंट चर्चा की ओर, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। दोस्तों कभी कभी दुनिया में

0: ऐसे हालात बन जाते हैं जहां लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ होता है तो वो है शांति और सुरक्षा। ऐसे समय में कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आते हैं। इन्हें ही कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक। इन्हें हर साल ये दिवस हम मनाते हैं 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए। इस दिवस को हम मनाते हैं, साथ ही साथ ये दिन उन बहादुर सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया के अलग अलग देशों में शांति बनाए रखने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में शांति मिशनों यानी पीस कीपिंग मिशंस की शुरुआत की थी और तब से लाखों शांति सैनिक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये सैनिक लोगों की सुरक्षा, चुनावों में सहायता, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने जैसे जरूरी काम करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूएन के शांति सैनिक सिर्फ युद्ध रोकने का काम ही नहीं करते बल्कि वे लोगों की मदद भी करते हैं जो संघर्ष और हिंसा से परेशान रहते हैं। उनकी काउंसलिंग करना, जीने की राह दिखाना और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा भरोसा देना उनका दायित्व है। दक्षिणी सूडान, लेबनान, सिप्रस जैसे देशों में यूएन पीस कीपिंग फोर्स काम कर रही है। भारत भी लंबे समय से यूएन शांति अभियानों में अपना योगदान देता आया है और भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया में सम्मान हासिल किया है। उम्मीद है इस खास दिवस की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब हमारी बारी है कि हम चले सेगमेंट चर्चा के अगले विषय मिशन लाइफ सतत खाद्य प्रणाली की ओर। 2022 में लॉन्च हुई ये योजना, इसका सीधा सा उद्देश्य है कि बेवजह बिजली खर्च, पानी खर्च ना करना, रीयूज करना चीजों को, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना। आजकल हम सब अच्छी सेहत और अच्छे पर्यावरण की बात तो करते हैं लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया है कि इसकी शुरुआत हमारी थाली से भी हो सकती है? बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी थाली से। जी हाँ, चलिए समझते हैं इस बात को। आज हम बात कर रहे हैं सतत खाद्य प्रणाली यानी ऐसी खाने की आदतों की जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो। जैसे जरूरत जितनी हो उतना ही खाना लेना, बर्बादी ना करना भोजन की, ताजी और स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करना और मोटे अनाज यानी मिलेट्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आप जब किसी को देखें कि वो फूड वेस्ट कर रहा है सामने वाला, तो उसे सिर्फ ये ना कहिए कि खाना बर्बाद करना गलत है बल्कि उन्हें इसके पीछे का कारण भी बताइए। उनसे कहिए कि आप ऐसा करके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल जब बचा हुआ खाना कूड़े में सड़ता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है। ये गैस एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यही वजह है कि फूड वेस्ट को एक हिडन पॉल्यूटर भी कहा जाता है। कम लोग इस बात को जानते होंगे लेकिन आज जान जाइए और खाना बर्बाद बिल्कुल मत करिए। उतना ही लीजिए थाली में जितना जरूरी हो। छोटे छोटे बदलाव हमें बहुत आसानी से पर्यावरण संरक्षण की राह पर चला सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको रोचक और अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता रोहित यादव से दिशा पांडे की बातचीत।
1: दोस्तों, आवाज का वो सफर जो कभी कुछ सीमित रेडियो सेटों से शुरू हुआ था, आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार और मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि देश की संस्कृति, साहित्य, संगीत और जन भावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की रफ्तार तक आकाशवाणी की आवाज हर दौर में लोगों के साथ चली है। आज जब आकाशवाणी अपने गौरवशाली सफर के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी कि अपना 90 वर्ष पूरा कर रहा है, तब ये सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं, यादों और विश्वास का नाम बन चुका है। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हम स्टूडियो में नहीं हैं बल्कि स्टूडियो से बाहर आ चुके हैं और अपने श्रोताओं से बातचीत करने वाले हैं कि आकाशवाणी का ये 90 वर्ष का सफर कैसा रहा, उनके अनुभव क्या रहे और कोई दिलचस्प बात जो रेडियो से जुड़ी हुई उनके साथ हुई हो। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा।
2: रोहित यादव नाम है मेरा।
1: रोहित जी, आप आकाशवाणी यानी कि रेडियो आप कब से सुन रहे हैं?
2: बचपन से सुनता आ रहा हूँ, 30 से 35 साल हो ही गए।
1: क्या बात है, 30 से 35 साल का अनुभव आपका कैसा रहा?
2: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इवन इंटरेस्ट था, तब सुनना चाहते थे हम। और पहले का क्या होता था, ना मोबाइल था हमारे पास और सिर्फ टीवी।

0: और रेडियो का ही साधन था हमारे पास, और उस टाइम ये होता था कि इन्वर्टर का भी ट्रेंड नहीं था बहुत ज्यादा, फिर गर्मियों के टाइम पे लाइट चली जाए, फिर हम सब एक साथ बैठ के रेडियो सुनते थे और कॉलिंग होती थी उधर से, जो है जो आरजे होते थे वो कॉल पे अटेंड करते थे सभी को और उनकी फरमाइशों का गाना सुनते थे, और उसके बाद फिर हम लोग ये करते थे कि अपनी भी फरमाइश हम दूसरे के थ्रू पहुंचाते थे या दूसरे का नाम लेके कि हाँ ये मेरे कजिन से इनके नाम से ये गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें होती थी और इसी में हमारा टाइम भी अच्छा निकलता था और लोगों के साथ हम बहुत अच्छे से रहते भी थे।
1: कोई दिलचस्प किस्सा आपके जीवन का जो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हो?
0: इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि हमारे कजिन्स हैं तो उनकी शादी नई नई हुई थी, तो भाभी जी का नाम हम लोगों ने रेडियो पे बोल के उनके नाम से एक गाना डेडिकेट किया था, और वो फिर भाभी जी को हम लोगों ने बताया कि अभी रेडियो ऑन करो आप और अभी आपके नाम से ये गाना जो है प्ले किया जाएगा, और भाभी जी ने उस गाने को सुना और उन्होंने अपने घर पे भी लोगों को बताया कि हाँ मेरे नाम से ये गाना डेडिकेट किया गया मेरे ससुराल साइड से। ये था हमारा गुड एक्सपीरियंस।
1: कौन सा गाना था आपको याद है?
0: हाँ, भैया का एक, जब फर्स्ट टाइम वो आए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो गाना गाया था लग जा गले।
1: अच्छा, क्या बात है। रोहित जी, बचपन से लेके अभी तक का आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा रहा कि जो आप सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे होंगे?
0: फरमाइशी बोल सबसे फेवरेट था, फरमाइशी बोल, जिसमें हम अपने पसंदीदा गानों को हम सुन सकते थे और मन को शांति मिलती थी उस गाने को सुन के, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि दूर दूर तक लोग इस चीज को सुनते थे, गांव में शहरों में हर जगह इसको डेडिकेट किया जाता था।
1: तो रेडियो पे अपना नाम सुनना एक बेहतरीन अनुभव रहा होगा।
0: एग्जैक्टली वो ज्यादा एक्साइटमेंट होता था कि दूर दूर लोग मेरा नाम सुनते थे, उस चीज को अनाउंसमेंट होता था कि रोहित जी की तरफ से ये गाना हम प्ले कर रहे हैं।
1: रोहित जी, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप भी काफी बिजी हैं और हमारे सवालों का जवाब आप बीच बीच में देते जा रहे हैं हमारे पूछने पर, तो आज का जो टाइम है इतना बिजी लाइफ हो गया, हर किसी की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, जिंदगी जो है बहुत भागदौड़ भरी हो गई है, तो आज के टाइम में आप रेडियो को लेकर क्या सोचते हैं या फिर किस नजरिए से देखते हैं?
0: देखिए, रेडियो को लेके मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि अभी क्या है, सबसे ज्यादा लोग मोबाइल को यूज करते हैं, इवन टीवी रेडियो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, मोबाइल के थ्रू भी हम आकाशवाणी को सुन सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो हमारे कहीं भी बैठे हुए हैं और अपने मन की शांति के लिए हम उस आकाशवाणी के थ्रू अच्छे अच्छे गानों को सुन सकते हैं।
1: रोहित जी, आप इतने बिजी शेड्यूल में रेडियो को अपना टाइम कैसे देते हैं, कैसे सुनते हैं आप?
0: मैम, रेडियो को टाइम देना नहीं पड़ता ना, हमें टाइम की जरूरत होती है, हम खुद ब खुद उस चीज को निकाल लेते हैं। रेडियो के थ्रू क्या है कि हम कहीं भी हैं, कहीं बैठे हुए हैं तो हम रेडियो को सुन सकते हैं। लाइक हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हम FM को चला लेते हैं, रेडियो के FM को चला लेते हैं और गाने को एंजॉय करते हैं। इवन मेरे घर में भी मम्मी मेरी खाना बनाती हैं तो वो FM को ऑन करके और पूरा खाना बना लेती है, उनको भी टाइम का पता ही नहीं चल पाता कि कब उन्होंने खाना बना के रख दिया।
1: और आप कैसे टाइम निकालते हैं?
0: मेरा टाइम, मैं तो पहले से ही सुनता आ रहा हूँ रेडियो को, और मेरी शॉप भी है, मैं शॉप पे भी बैठ के गाने को सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ, उस चीज़ को इंजॉय भी करता हूँ। रही बात और सारी चीज़ों की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज की जो हमें पता चलती रहती है, लाइक मौसम के बारे में, कृषि के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। बड़ी बात ये होती है कि हमें मौसम की जानकारी ये मिल जाती है कि आज गर्मी हो रही, बारिश होने वाली, ये हमें पहले से ही पता चल जाता है इस चीज़ का। रेडियो के थ्रू वो उनको ये जानकारी मिलती है कि वो वैकेंसी जो निकलती है वो रेडियो के थ्रू उन तक पहुंच जाती है ईजली। इवन गांव में तो अभी बहुत ज़्यादा संसाधन की कमी है, तो वहाँ पर भी जो वहाँ के बच्चे हैं और लोग हैं उनको रेडियो के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पे क्या वैकेंसीज आ रही हैं, या किसानों को कृषि के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो रेडियो के थ्रू उन तक पहुँच जाते हैं ईजली, उनको कहीं आने की जरूरत नहीं होती है।
1: रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: हमने सुनी आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता रोहित यादव से दिशा पांडे की बातचीत। तो अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम।

0: मंत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800037222।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। अब बारी है कि हम चलें रेडियो तरंगों के माध्यम से करने सैर, और आज हमारा टिकट बुक है स्पेन की राजधानी मैड्रिड का। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, खूबसूरत इमारतें, स्वादिष्ट खाने और मस्ती भरा माहौल, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। मैड्रिड अपनी कला, संस्कृति और शानदार लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत से मैड्रिड जाने के लिए आपको फ्लाइट लेनी होती है। अगर आप वहां जाएं तो सबसे पहले रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड जरूर देखिए। ये पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े शाही महलों में से एक माना जाता है। इनकी खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े हॉल और शाही सजावट लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। इसके बाद आज आप जा सकते हैं एल रेटिरो पार्क, जहां लोग सुकून से समय बिताना पसंद करते हैं। यहां ग्रीनरी, झील और प्यारा सा गार्डन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको भीड़ भाड़ और शहर की रौनक, चहल पहल पसंद है तो प्लाजा मेयर और ग्रीन विया जैसी जगहों पर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा जाना। यहाँ सड़क किनारे कैफे, म्यूजिक और लोगों की चहल पहल शहर को और भी जीवंत बना देती है। और दोस्तों, अगर बात करें मैड्रिड के खाने की, तो वहाँ का स्वाद काफी अच्छा और अलग माना जाता है। वहां आपको छोटे छोटे कैफे, लोकल मार्केट्स में कई पारंपरिक स्पेनिश डिशेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। खास तौर पर चुरोज एक वहां की स्पेशल डिश है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वहां पर। और शॉपिंग जिन्हें पसंद होती है करना, काफी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूमने जाते हैं तो उनको शॉपिंग किए बिना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए मैड्रिड किसी जन्नत से कम नहीं है। वहां के लोकल मार्केट्स, स्ट्रीट शॉप्स और फ्लिया मार्केट्स में कपड़े, हैंडमेड चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कभी मौका बने तो जरूर फ्लाइट पकड़कर स्पेन की कैपिटल मैड्रिड पहुंच जाइए। और अब हमारा अगला सेगमेंट, जिसमें हम करते हैं अपनी वोकैबुलरीज को स्ट्रॉन्ग, और लेकर आते हैं प्यारा सा सेगमेंट शब्दावली। शब्दावली यानी पांच ऐसे शब्दों की जानकारी जिसके इस्तेमाल से आपकी बातचीत होगी और भी असरदार और अट्रैक्टिव। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट या रिकॉर्ड कर लीजिएगा और करिएगा लगातार इस्तेमाल। तो पहला शब्द है सेरेंडिपिटी, यानी सुखद संयोग। स्पेलिंग है SERENDIPITY। ये एक नाउन शब्द है। सिनोनिम है इसका फ्लूक और एंटोनिम है मिसफॉर्च्यून। वहीं वाक्य प्रयोग कर सकते हैं जैसे मीटिंग माय फेवरेट ऑथर एट द एयरपोर्ट वाज प्योर सेरेंडिपिटी, यानी हवाई अड्डे पर अपने पसंदीदा लेखक से मिलना एक सुखद संयोग था। दूसरा शब्द है मेलिफ्लस, यानी मधुर। स्पेलिंग है MELLIFLUOUS। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। सिनोनिम है डलसेट और एंटोनिम है कैकोफोनस। सेंटेंस इसमें हम बना सकते हैं सेंटेंस जैसे द सिंगर चार्म द ऑडियंस विद हर मेलिफिलस वॉइस, यानी गायक ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरा शब्द है वॉल्यूबल, यानी बातूनी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। स्पेलिंग है इसकी VOLUBLE। सिनोनिम है टॉकेटिव और एंटोनिम

एक्रोनिम है क्वाइट। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, द वॉल्यूबल टूर गाइड शेयर्ड एंडलेस स्टोरीज अबाउट द पैलेस, यानी बातूनी टूर गाइड ने जगह के बारे में अनगिनत कहानियां साझा की। चौथा अंग्रेजी शब्द है हेल्सियन, यानी सुखद, स्पेलिंग है HALCYON। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, सिनोनिम है पीसफुल और एंटोनिम है केओटिक। वाक्य प्रयोग है, शी रिकॉल्ड द हेल्सियन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी उसने अपने बचपन के सुखद दिनों को याद किया। और आज का हिंदी शब्द है कूल, यानी किनारा। ये एक संज्ञा शब्द है, वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नदी के कूल पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये थे चार अंग्रेजी और एक हिंदी के शब्द। उम्मीद है शब्द अच्छे लगे होंगे। इनका इस्तेमाल लगातार एक हफ्ते करिए, और फिर जब अगले शुक्रवार को हम आपको नए शब्द दें तो उनका भी ऐसे इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके पास एक वोकैबुलरीज का रिच बंडल तैयार हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलकर गुनगुनाते हैं प्यारा सा गाना फिल्म सत्य प्रेम की कथा से, जिसे शब्दों से पिरोया है तनिष्क बागची, और वायु ने संगीत से चार चांद लगाया है तनिष्क बागची ने, और आवाज का जादू बिखेरा है अरिजीत सिंह ने।

0: हमने सुना प्यारा सा गाना फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। वैसे दोस्तों, गर्मी ने बेहाल कर रखा है। इस नौतपा में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और कभी कभी मौसम सही भी हो, जैसे बारिश हो जाती है या ठंडा मौसम हो जाता है थोड़ा, तो भी थोड़ी देर में वापस से वैसी ही उमस और गर्मी बढ़ जा रही है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है छोटे बच्चों की देखभाल करना। इन दिनों बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं, समय समय पर नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी देते रहें। और वैसे भी अब तो समर वेकेशन हो गई है, तो बच्चों को खासकर दोपहर में बाहर ना जाने दें। और साथ ही साथ अगर आप खुद खुले में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो सिर, चेहरा, हाथ, पैर आपको ढके रहना चाहिए। साथ ही साथ छाते का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति लू से प्रभावित हो जाए तो उसे छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछे अथवा नहलाएं और चिकित्सक से संपर्क करें। और साथ ही साथ यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ ले जाएं, ORS, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़ जिसे बोला जाता है, नींबू, छाछ, और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। और अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, उन्हें सुस्ती लग रही है, शरीर गर्म लग रहा है उनका, या वो कम पानी पी रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पेय पदार्थ के साथ साथ खाना भी हल्का रखें। बहुत भारी, स्पाइसी, ऑयली खाना गर्मी में परेशानियाँ बढ़ा सकता है। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जहाँ हों वहाँ शाम के समय खिड़की दरवाजे खोलें और दोपहर के वक्त बंद रखें। बहुत ज़रूरी है अपने साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और पूरे परिवार का ध्यान रखना। उम्मीद है आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। साथ ही गर्मी की इमरजेंसी किट हमेशा रखिए साथ, जिसमें वाटर बॉटल, ORS, हैंड टॉवल, सनग्लासेस के साथ छाता और हैंड फैन रखिए। अब टिक टिक करती घड़ी की सुई कह रही है कि वक्त हो गया है विदा लेने का, पर दिल कह रहा है कि बस कुछ पल और। तो आपके लिए सुनते हैं दिल की और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, और इन्हीं पलों में आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को क्या होगा खास आज आपके लिए कार्यक्रम युववाणी में। कल चर्चा में बात होगी गोवा राज्य स्थापना दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की। सेगमेंट हमारी धरोहर में जानेंगे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट के बारे में, सुनेंगे वार्ता जिसमें छात्रा साक्षी दुबे बताएंगी युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, आर्थिक जगत में जानेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, और होंगे गीत संगीत। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको मेरे यानी दिशा श्रीवास्तव के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कार्यक्रम लिखकर बताइए हमें हमारी ईमेल आईडी yuvvani@gmail.com पर, या करिए कमेंट आकाशवाणी के फेसबुक और इंस्टा पेज की युवाणी पोस्ट पर। साथ ही आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8303211 पर। ध्यान रखिएगा, मैसेज टाइप करने के पहले कैपिटल लेटर में AKB जरूर टाइप कर दें। आपको बता दें आज आपने युवाणी का सफर तय किया अपनी दोस्त दिशा श्रीवास्तव के साथ। मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: ये वाणी का गुलदस्ता सजता है हर दिन एक नए अंदाज में।
1: जी हाँ, हफ्ते के हर दिन को हम लाते हैं कुछ खास सेगमेंट के साथ।
0: हर सोमवार करियर गाइडेंस और रोजगार समाचार,
1: और प्रत्येक मंगलवार भारतीय इतिहास से और चक्रव्यूह,
0: बुधवार व्यक्ति विशेष और खेल संसार,
1: वहीं गुरुवार का दिन होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद के लिए।
0: प्रत्येक शुक्रवार को स्थान और शब्दावली सेगमेंट,
1: और शनिवार को हमारी धरोहर और आर्थिक जगत सेगमेंट।
0: रविवार की युवाणी को सजाते हैं हम ज्ञान विज्ञान और संस्था सेगमेंट से।
1: तो सुनते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम युवाणी हर शाम 5 बजे से 5:30 तक। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM 101.9 MHz पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप कार्यक्रमों को सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
6: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
5: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
6: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
5: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
6: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये किसानी गीत छविलाल पाल और साथियों के स्वर में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं सुषमा गुप्ता और सखियों के स्वर में ये नकटा।

0: ये गीत आपने सुना रत्नेश द्विवेदी और साथियों के स्वर में।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे

0: आश्रम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये FM आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडबरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने

प्रोग्राम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म ओ रोमियो से। मधुबंटी बख्शी और जावेद अली की आवाज है, गुलजार का लिखा गीत है, विशाल भारद्वाज का संगीत।

प्रोग्राम शाम सुहानी में आइए आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये दूसरा गाना। ये भी एक नया गाना है धुरंधर 2 फिल्म से, शाश्वत सचदेव और जैस्मिन की आवाज है और इसके कंपोजर हैं शाश्वत सचदेव।

0: आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी FM एंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन सर्वेभ्यः उच्च न्यायालयेभ्यः त्रिषु मासेषु एव रक्षिताः आदेशाः घोषयितुं निर्दिष्टम्। शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षापराध विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय योग्य छात्राणां रक्षणाय च आश्वासितम्। पीएम सूर्या घर योजनया प्रमुखं लक्ष्यं प्राप्तम्। अस्मिन् प्रायः 40 लक्षाणि गृहाणि रूफ टॉप सोलर इत्येतम् अंगीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन देशे जून मासे सामान्यात् न्यूनं प्रावृत्त वृष्टेः, अनेकेषु राज्येषु सामान्यात् अधिकं यावत् उष्णतरंगस्य स्थितेः च संभावना प्रकटिता। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन सम्पूर्णे देशे सर्वेषाम् उच्च न्यायालयानां कृते निर्देशः प्रदत्तः यत् आरक्षित निर्णयाः त्रिमासाभ्यन्तरे एव प्रदातव्यम्। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् निर्णय घोषणायां विलम्बः वादिनां कृते अपरिवर्तनीयां हानिं जनयितुं शक्नुवन्ति। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य सम्बद्धेषु प्रकरणेषु शीघ्र निर्णयस्य आवश्यकता यः उपरि बलं प्रदत्तम्। मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः तथा न्यायाधीशः जाय माल्या बागची इत्येतयोः पीठेन उक्तं यत् प्रतिभूत्याः आवेदन विषये निर्णयः तस्मिन्नेव दिने घोषणीयः। यदि निर्णयम् आरक्षितं भवति तर्हि तत् अग्रिमदिने एव प्रकाशितं भवेत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अन्येऽपि अनेकाः निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायालयेन उक्तं यत् बन्धनमुक्तेः अथवा दण्डस्थगनस्य आदेशः निर्णय घोषणानन्तरं त्वरितं कारागृह प्राधिकारिभ्यः प्रेषणीयः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य उक्तवान् यत् प्रश्नपत्र लीक प्रकरणम् अतीव दुर्भाग्यपूर्णमासीत्। डीडी न्यूज इत्यनेन सह विशेष संवादे श्रीप्रधानः आश्वासितवान् यत् पुनः परीक्षायाः प्रक्रिया सम्यक् व्यवस्थितरूपेण विना कस्यापि दोषेन च सम्पन्ना भविष्यति।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
3: अस्मिन् विषये सः सर्वेषां सहयोगम् अपि याचितवान्। छात्रान् सम्बोधयन् प्रधानः तान् आश्वासितवान् यत् प्रशासनं तेषां चिन्ताम् अवगच्छति तथा च तेषां विश्वासः आहतः अभवत् इति स्वीकरोति। सः अवदत् यत् अधिकारिणः तदर्थं कठोरः निर्णयः स्वीकृतवन्तः यत् तेन इच्छन्ति यत् एकस्यापि योग्यस्य छात्रस्य भविष्यं परीक्षापराधीनां हस्ते अथवा कस्यापि प्रकारस्य दुराचारस्य कारणेन पीडितं न भवेत्।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बना

0: स्वीकृत्य तत्कालीनेन प्रभावेण मन्त्रिमण्डलं विघटयत्। परञ्च यावत् कार्यवाहक मुख्यमन्त्रिरूपेण वैकल्पिक व्यवस्था न भवति तावत् पर्यन्तम् अस्मिन् काले किमपि निर्णयं न स्वीकर्तुं सहैव अस्मिन् पदे यथावदेव भवितुम् आदिष्टम्। सिद्धरमैया वर्यः ह्यः लोकभवने स्वस्य त्यागपत्रं समर्पितवान् आसीत्। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। विजेतृदलं रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में आपका स्वागत है। पहली आवाज अभिनंदन शुक्ला की इस निर्गुण रचना के लिए।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, यूं तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने का काम नहीं रुकना चाहिए। और देखिए ना, गणेश कुमार सिंह और उनके साथी कैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में हम सबको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।
3: अरे पढ़ावा लिखावा हम।

सही, बहुत ही सुंदर गीत गणेश कुमार सिंह और साथियों के स्वर में हमने सुना, साक्षरता पर केंद्रित। और इसी के साथ समाप्त हो रहा है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

पंचो जय हिंद, एक बात कही, जल जीवन का आधार होत है, एकरे बिना जीवन संभव नहीं है। धरती पे सब है प्राणियन बदे जल अमृत के समान होत है। ए भैया, जीव जंतुन के लिए तो जरूरी है, पर जौन अपने सभय के हरियाली युक्त अपने धरती मैया के सुंदरता माँ चार चांद लगावत ना, पेड़ पौधा रिकिम रिकिम के फसल, बाग बिरवा फूल पौधा भी पनिए के ऊपर हरा भरा रहा है। आहो यह गर्मी माँ बहरे से काम धंधा कहे से घरे आवे ना, तो गटैया जब सुखाए जात है, गुड़ खाए के एक लोटा पानी पिए के बाद अपने सबय के दहिया हरी भरी हो जात है, यानी जान में जान आ जात है। साथ ही साथ नहाए धोए बदे, खाना बनावे बदे, शरबत लस्सी मट्ठा आदि बनावे के लिए पानी की ही जरूरत पड़त है। अपने सभय के पानी के संरक्षण करे के चाहिए, काहे से अपने सभय और आवे वाली पीढ़ी बदे उनका सुरक्षित रखे के लिए अपने सबका पानी के दुरुपयोग ना करे का है, उसके संरक्षण करे का है, शुद्ध पानी का ही सेवन करे। जहाँ तक हो सके भैया, यह समय बहुत ज़्यादा ठंडा पानी न पिए, जेरा तो ना ही मानत, पर वही का सामान्य कह के तब खुद पिए और परिवार बदे भी पिए का दे। माटी के मटका में रख के रखे तो वो शुद्ध हुआ ताज़ा रहत है, वही के पानी पिए बदे इस्तेमाल करे। यह गर्मी में भैया ना, जैसे खुद थोड़के देर में प्यास लाग जात है, ठीक वैसने सरियवा में जौन गोरू बछरू बाधा हैं उन्हों का ताज़ा व साफ पानी दे के चाहिए। और उनके सरिया के खिड़की पे जौन जूट वाला बोरा होत ना, ओका टांग दे और दोपहर एक समय बढ़िया ठंडा पानी से गीला कर दे। ऐसन कहे से गोरू बछरू का सरिया माँ घाम न लागे और जवन बयार जाए भैया ना, तो वह ठंडक के आवाज करी हैं। जब शाम के जुड़ाड़ हो जाए तब भी पनिए से गाय भैंस का नहलाए के चमकाए दे, पानी गर्म न रहे ताज़ा रहे के चाहिए। काहे से दोपहरिया में गर्मी के कारण अपने सबके देखा जौन गाय भैंस हैं सब हाफे लागत हैं, यानी जितना भी जीव जंतु हैं सब है के पानी के आवश्यकता है। यह मारे अपने सभय का जल के संरक्षण करे का है, तब आवे वाली पीढ़ी खुशहाल रह सके और शुद्ध पानी के अहमियत का जान सके। कहा भी गवाह है, ऊर्जा पानी के करे बचाओ, खत्म हो जाए सगरो तनाव। ए भैया, जैसे ससिया लेवे बदे ऑक्सीजन की जरूरत होत है, ठीक वैसने यह पृथ्वी पर जितना जीव चिड़ई चिरंगुल पेड़ पौधा हैं सभी का जीवित रहे बदे, स्वस्थ रहे बदे।

0: सुंदर दिखाए के लिए पानी का ही अहम भूमिका है। यह हमारे अपने सभ्य का अनावश्यक रूप से पानी का दोहन ना कहके सजोवे की जरूरत है। कहा गवा है ना, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पर भैया पिए बदे पनिया का राखे के लिए डिजाइनदार टोटीदार मटका में पानी राखे तो जोड़ जोड़ पानी पिए के मिले। ऐसने कुछ हम जानकारी लाए ही किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का स्रोत मिट्टी से तैयार नकाशदार बर्तन इकरे बारे में जानकारी देता है श्री शिव बहादुर और इनसे बतियाता है प्रभाकर शुक्ल भैया, तो सुना जाए।
1: पंचो आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं श्री शिव बहादुर प्रजापति जी। आपके घर है अल्पी का पूरा पोस्ट ऊंचे गांव रुईहावा विकास खंड मया बाजार तहसील सदर जनपद अयोध्या। आज हम इनसे बातचीत करेंगे किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का स्रोत मिट्टी से तैयार नक्काशीदार बर्तन। सबसे पहले तो शिव बहादुर भैया आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी सर।
1: आप कितना दिन से काम में जुड़ा है?
2: ये लगभग सर हमको हो गया 14-15 साल।
1: अच्छा, तो माटी के बर्तन जोन भाई आप बनाओ थे?
2: जी सर।
1: ये का शुरू करे से पहले आप काव करते रहो पढ़ाई लिखाई के बाद कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं?
2: जी सर, हम पढ़ाई तो ज्यादा नहीं किए, 8वें में छोड़ दिए हैं।
1: पढ़ाई के बाद फिर आप कमाई सिलसिले में बाहर गए हुए या यहीं कमाते रहे?
2: नहीं, कमाने के लिए गुजरात वहाँ गए तो वहाँ कुछ दिन मतलब हेल्पर किए, उसके बाद फिर क्रान चलाना शुरू किए, तो उसके बाद फिर वहाँ से जब ये भाई का लड़का का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से छोड़ दिए।
1: अच्छा अच्छा, तो फिर तब से आप घर ही?
2: तब से घर पे से मतलब यहीं पे यही अपना बिजनेस मिट्टी का यही करते हैं।
1: ये आपके जो काम है ये एक तरह से परंपरागत रूप से पैतृक काम है?
2: जी सर।
1: आपके घर में भी आपके बाबा दादा ये काम से जुड़ा रहा हूँ?
2: जी सर।
1: और आपको यह काम में लगा हूँ?
2: जी।
1: ये जो काम आप करते हो बर्तन बनाओ के खास करके माटी के?
2: जी सर।
1: तो ये काम बनावे के लिए आपका कौनी कौनी चीज की आवश्यकता पड़ा था?
2: इसका पहले सर जैसे हम मिट्टी मंगा लेते हैं टाली से घर पे इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि बारिश में तो मिट्टी मिलती नहीं है।
1: जी।
2: तो मिट्टी जब आती है तो उसको सुखवाते हैं हम, उसका पिसाई करते हैं।
1: अच्छा।
2: पिसाई करने के बाद फिर उसको मतलब भिगाते हैं बड़े तगाड़े में।
1: जी।
2: तो उसको फिर उसके बाद उसको झन्ना से चालते हैं, जो कंकड़ रहता है उसको निकाल देते हैं। कंकड़ निकाल देते हैं उसके बाद फिर उस सूखने में मतलब एक हफ्ता 4 दिन जो लगे मतलब उसके बाद एक ही टैंक तो रहता नहीं मतलब 2-4 रहता है तो उसमें जो सूखता है वो निकलता रहता है मिट्टी।
1: मतलब सीधे खुदाई के बाद मिट्टी आप उपयोग नहीं करते हो?
2: नहीं,
1: पहले का अच्छे से साफ के लिए। हाँ। तो हम के कोनो भी जो कण है पत्थर है इनका
2: सब निकाल देते हैं
1: फिर सुखवा लेते।
2: जी सर।
1: फिर करीब बाद भिगवा होते?
2: हाँ, भिगाने के बाद मतलब उसको छान देते हैं जैसे मतलब कपड़ा रहता है या उसी पे मतलब छान देंगे। जब धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा मिट्टी मतलब हल्का टाइट हो जाएगा तब उसको हम निकाल लेंगे।
1: अच्छा।
2: निकालने के बाद फिर उसके बाद उसको जो है मतलब चाक पे ले जाएंगे उसका पीड़ा बनाएंगे।
1: जी।
2: पीड़ा बना के उसके बाद चाक पे रखेंगे उसके बाद जो है तब मछली का मतलब हुआ या कछुआ हुआ या बत्तख हुआ पहले उसको बनाएंगे चाक पे पार्ट हर पार्ट उतारेंगे उसके बाद फिर उसको हाथ से मतलब आकार देना चालू करेंगे। आकार देना जैसे मछली हुआ इसको उसी पे बना के उसके बाद फिर आकार मतलब हाथ से देते हैं।
1: अच्छा। तो एक जैसे मछली बनावे का है तो हम आपके कम से कम कितना समय लग जाता है
2: एक मछली बनाने में? सर जैसे हमको लगभग आधा घंटा।
1: तो यही तरह से जो ने बर्तन में जितने ज्यादा कलाकारी है उसमें उतने ज्यादा समय
2: उतने ज्यादा समय है।
1: कौन कौन चीज आप बनाओ जैसे कुल्हड़ बनाओ थे हो जैसे गिलास का बनाओ थे?
2: लस्सी वाला गिलास हो गया।
1: हाँ।
2: उसके बाद फिर चाय वाला गिलास हो गया, दूध वाला गिलास हो गया, और उसके बाद फिर इधर मछली हो गया, फिर उसके बाद कछुआ हो गया, फिर उसके बाद सेब हो गया, फिर उसके बाद ये जो है बत्तख हो गया।
1: अच्छा।
2: फिर उसके बाद दीपक हो गया।
1: तो ये जो कछुआ और सेब वगैरह बनाओ थे भैया ये खाली सोबाजी के लिए रहा था कि एक और कौन उपयोग हुआ था?
2: इसका उपयोग यही होता है जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं उसमें पैसा डालते हैं गल्लक नुमा रहता है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो एक तरह से देखा हुआ नीक लागत है।
2: हाँ।
1: और अपने घर के जोन के

0: चाह रहे हैं, अगर वो चाहें तो थोड़ा थोड़ा पैसा गुल्लक की तरह से
1: जी सर,
0: तो एक अच्छी पूंजी उन्हों पास इकट्ठा हो सकत
1: जी।
0: तो ये व्यवसाय करत कितना दिन होएगा आपका?
1: ये व्यवसाय हमने किया 2003 से।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: 2003 से आप यहाँ लगा हो, आपके साथ है और कौन कौन सहयोग करत है?
1: अब जैसे बच्चे लोग हैं, जैसे पढ़ाई के बाद वो छुट्टी पाते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प वो भी कर देते हैं,
0: मतलब परिवार के लोगों के साथ भी यहाँ रहा था
1: जी सर सहयोग।
0: और सुना है भैया आप लोग स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ा हो?
1: जी सर।
0: तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी का ई जोन बर्तन आप तैयार करते हो?
1: हाँ, इससे भी सप्लाई होता है सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो यहाँ और जो समूह के सदस्य हैं, चाहे वो महिला या पुरुष, उन्हों ये काम में कुछ हाथ बटावत हैं?
1: हाँ जी सर, वो भी बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे इसमें नहीं बटाते हैं, जैसे आप वो अपने बनाते हैं वो अपने सेलिंग करते हैं।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: तो ई जोन बिक्री होता है इस समूह के माध्यम से, कई स्टॉल लगाए के बेचत थे, जोन सामान तैयार हुआ था, आखिर एक बाजार में बेचे पड़त है, अच्छी मार्केट में पहुंचावे के लिए आपका का ध्यान दे पड़त है?
1: अच्छी मार्केट में जैसे इसका फिनिशिंग बढ़िया होना चाहिए, फिनिशिंग अगर अच्छा है तो मार्केट में घर से भी लोग उठा ले जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो मार्केट ले जाना कोई जरूर आवश्यकता नहीं पड़ता है, घर से जैसे कुल्लड़ हुआ ये तो घर से ही ज्यादा करके मतलब उठा ले जाते हैं।
0: दिवाली वगैरह भी?
1: हाँ, ये भी मतलब ये दीपावली को जो मतलब दुकान लगता है वैसे भी बिकता है
0: जी,
1: लेके जाना पड़ता है गाँव लेके जाते हैं। हाँ जी,
0: तो ये तरह से एक जो माटी का जो भी बर्तन है या सो पीस तैयार करने के लिए बढ़िया बढ़िया हमारा डिजाइन देके आप बनावत हो
1: जी सर,
0: तो ये सब बिक जात है।
1: हाँ,
0: आगे ये बताओ हमारा आमदनी आपका कितना मिल जात हुई?
1: आमदनी जैसे सर महीने में 4 बार लगता है, एक बार में कम से कम 20,000 का माल उसमें पकता है।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: अच्छा, चाक भैया पहले वाला ही रखे हो जो डंडा से मसावा जाता
1: है? वो भी कुछ दिन चलाए थे
0: जी जी,
1: लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा पड़ता था।
0: हाँ,
1: इसलिए उसको मतलब हटा के तब इलेक्ट्रिक चाक लिए।
0: अच्छा, अब बिजली से चलता
1: है? हाँ, बिजली से चलता है, बाकी उसी पे अब बनता है।
0: अच्छा, ये चाक पे कौन कौन चीज चाक के द्वारा ही निर्माण करते हो आप?
1: चाक के द्वारा जैसे मछली हुआ, कछुआ हुआ, और सेब हुआ, बत्तख हुआ, और कलश हुआ, और धारे वाला मेटी हुआ, जल देने वाली मेटी जैसे मतलब छोटे छोटे देते हैं
0: जी जी,
1: और शादी विवाह में जैसे कलश लगता है, और धार का इसमें भी लगता है, देवतन को कुछ लोग ले जाते
0: हैं
1: मतलब,
0: देवता के लिए भी
1: हाँ वो भी मतलब वो करते हैं, तो यही सब मतलब उसमें तैयार होता है।
0: अच्छा,
1: गोल वाली पे।
0: अच्छा, ये का सुंदरता दिए खातिर जोन भी आप चीज तैयार करता हो
1: जी,
0: ये का खूब अच्छा लागे देखे में सुंदर लागे, ये करे लिए का करत हो?
1: इसके लिए सर जैसे मतलब उसको हम चाक पे बना देते हैं, उसके बाद चाक पे इसको खरादते हैं।
0: अच्छा,
1: खराद के उसके बाद फिर इसका आकार देना चालू करते हैं
0: जी। अच्छा, जैसे एक मिट्टी में सुखवायो बनाए के बाद?
1: हाँ नहीं, जैसे हल्का सूख जाता है जब तब उसको खरादते हैं।
0: अच्छा,
1: खराद के हल्का नरम रहेगा तो उसके बाद फिर उस पे मतलब पार्ट जोड़ा जाएगा।
0: अच्छा, अलग अलग जो कुछ बनावे के डिजाइन
1: अलग अलग जोड़ा जाएगा।
0: फिर यका पकावत हो
1: जी?
0: पकाए के बाद भैया देखो सीधे पकाए के बाद उतना अच्छा तो देखे हम नहीं लागत,
1: नहीं जब पेंट हो जाता है तब भी अच्छा।
0: हाँ,
1: लगता
0: यही
1: है।
0: हम जाना चाहते हैं कि फिर कुछ रंग रोगन भी करते हैं
1: जी, जब जैसे मतलब जब पक जाता है तब इसको मतलब रेगमाल से जो कहीं अगर स्क्रेच रहता है उसको रेगमाल से
0: मतलब जहाँ खुरदरापन है तो उसका मिटा दिया थे
1: उसको रेगमाल से घिस देते हैं, उसके बाद फिर इसका पेंटिंग करने चालू कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: तो पेंटिंग करने के बाद तब अच्छा लगता है।
0: एक बेचे के लिए आपका शहर में भी लेके स्टॉल लगावत हो?
1: जी सर, राम बैंडी भी लगता है, राम कथा पार्क भी जाता है
0: जी, ये तरह से बेचे के लिए भी व्यवस्था शहर में भी किए हो
1: जी सर।
0: जो उन घर से बिक जाता है?
1: हाँ, घर से तो निकल ही जाता है।
0: और इसके अलावा क्या काम करते भैया?
1: इसके अलावा गिलास भी बनता है, खेती अपना मतलब देखते हैं
0: जी।
1: और गिलास का तो मतलब जैसे लाइट हमको मिल गया तो उस पे जुट जाते हैं, गिलास बनाना अपना चालू कर दिए
0: जी,
1: छोटा वाला। फिर उसके बाद अगर छोटा वाला स्टॉक हो गया थोड़ा तो फिर लस्सी वाला बांध दिए डाई।
0: बहुत अच्छी बात है शिव बहादुर भैया, क्योंकि धीरे धीरे देखते है कि लोग ऐसे दूर हो जाता है, दूसर दूसर काम अपना लेता है, लेकिन अपन जो पैतृक गुण रहा है
1: जी सर,
0: हुनर रहा है, ये का लोग भुलावे लागे, लेकिन आप अपने हुनर में कामयाब हो लगा हो, तो वैसे देखा जाए ये काम से आप

0: कितना संतुष्ट हैं?
1: हमको तो बहुत संतुष्ट है और उसका भी हम यही मतलब सोचते हैं इससे भी आगे मतलब बढ़ें।
0: अच्छा, सरकार के माध्यम से का कुछ है यह आपका आगे बढ़े के लिए कोनो सहयोग आज तक मिला है कि नहीं मिला?
1: अभी तो नहीं मिला सर।
0: प्रयास किए हो कि नहीं?
1: प्रयास तो बहुत किए हैं लेकिन अभी मिला नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, वैसे भी सरकार ये कला का बढ़ावा दिए के लिए तमाम जो योजना है चलाए हुए आर्थिक रूप से सहयोग भी चाहे ऋण के माध्यम से करते हैं ताकि ये व्यवसाय का आप और आगे ले जाओ ऊंचाई पहुंचे वहाँ।
1: जी सर,
0: तो कब प्रयास करो क्योंकि कुम्हार कला का बढ़ावा के लिए काफी कुछ प्रयास है सरकार के, चाहे वो भारत सरकार का है चाहे अपने प्रदेश की सरकार है।
1: तो अभी हमको चाक मतलब मिल जाए तो इसमें बुरुस भी मिलता है, जिसे हम अभी तो बुरुस पाए नहीं सर।
0: अच्छा,
1: बुरुस पाए नहीं है और बुरुस जब मिल जाएगा, बुरुस आता है इसका चक्री आता है। अच्छा, जिसे डिजाइन देने के लिए तो इसका चक्री, तो अभी तो हम अपना ही से मतलब इधर उधर से मतलब वैसे देख के हम बना लेते हैं, मतलब आकार अपना ही दे देते हैं उसका।
0: मतलब वही नई टेक्नोलॉजी जो आजकल यहाँ उपयोग होती है वो अभी तक पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंच पाई।
1: अभी आकार वो जो देने वाला है वो सामान हमारे पास नहीं, लेकिन सब हाथ से ही देते हैं अभी।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतनी सुंदरता यह कला के माध्यम से अपने हाथों से बिखेरत हो तो ये आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत नाजुक होते माटी के बर्तनों का बनाए पाओ या जो भी आप तैयार करते हैं उसे तमाम सुंदरता प्रदान करने वाली चीजन का। तो शिव बहादुर भैया आगे और यहाँ का करे की योजना है आपके?
1: अब ये आगे यही योजना है कि मतलब उसको हमको और ऊपर ले जाना है, बढ़ाना है।
0: गेंद गिरा रहे भैया पढ़ाई लिखाई का?
1: हाँ, वो तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं।
0: तो का उन्हों सबके मन हेमा लागत है?
1: नहीं, वो लोग को पढ़ाई में लगता है, जैसे मतलब छुट्टी रहता है तो मन ये कहता है मतलब बैठते हैं एक दो घंटा, ऐसी बात नहीं।
0: और भैया इतना अच्छा काम करता हो और पर्यावरण के अनुकूल है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यही है। आज तो कल आधुनिकता के दौर में लोग प्लास्टिक है के उपयोग बढ़त जात बाय, मूल आप माटी के बर्तन तैयार करके और पर्यावरण के संरक्षण में एक तरह से देखा जाए तो आप सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात, यह तरह से आप अपने काम का आगे बढ़ावें, आप और अच्छी आमदनी करें, आप काफी ऊंचाई तक जाएं। आकाशवाणी परिवार की ओर से आप जानकारी दी हो अपने हुनर के अपने कला के, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखें, अभी आप सुनत रहे किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का स्रोत मिट्टी से तैयार नक्काशदार बर्तन के बारे में, जौन की बतावत रहे श्री शिव बहादुर से प्रभाकर शुक्ल बतलात रहे। सहीम भैया, अगर कहूँ घूमे टहरे अपने सब जाई थी और थकान महसूस होत है तो यह मन कहत है कि चलिए कोनो दुकानी पे जहाँ कुल्हड़ में चाय मिले सोन सोन होका पिया जाए। तो बताओ कितनी मेहनत से सब बर्तन बनावत है, पूजा पाठ होत है, कौनो कार्य प्रयोजन होत है तो मने माटी के बर्तन खरीदत है, कलसा बदे दिया जलावे बदे। और यही मेर से सैती देखा घरे घरे में, हम तो कही थी मटका जरूर रखा रहा था पानी पिए बदे, काहे से फ्रीज में रखा पानी उतना स्वास्थ्य बदे हितकर नहीं होत जितना कि मटका मगर पानी रखा जाए अवोका फिर जोड़ जोड़ पिया जाए। यही मेर से भैया कहा भी गवाह है ना कि जौन अपने घर में गदारे हो थे वह जैसे कुम्हार माटी से रिकिम रिकिम के कितना सुंदर सुंदर सुडौल बर्तन बनावा थे, वैसने अपने घर में जौन नौनिहाल गदारे हैं उनहू हैं और उनका बनावे बदे उनके भविष्य बनाए बदे हर महतारी बाप का कर्तव्य होते हैं। काहे से भैया हर बच्चन का अगर देखा महतारी बाप जन्म से ही बड़ा होते संस्कार देत है तो वही मेर से वह गदारे बनत चला जाते हैं। केहू घरे अब बजा ननवार गदारे रहा थे अगर पैर छुई लेते तो कितना मन खुश हो जाते है, आदमी आशीर्वाद देते है। इस सब भैया वे खुदा ना सीखते, बड़ा मनई जे महतारी बाप के सेवा करे थे प्रणाम करे थे सवेरे ते सब ननवार लड़के देखे थे और यही उम्र में अनुकरण करे के आदत बहुत जल्दी पनपत है, बहुत जल्दी वह सीखत हैं। तो यही मेरे से अपने गदारन का ख्याल रखे महतारी बाप तो निश्चित है वे विकास करी हैं। साथ ही साथ देखा भैया गदारन के जवन गर्मी छुट्टी भैया तो हर स्कूल में जवन बा उनका काम दिन गए हुए हर विषय बदे उनका महतारी बाप को चाहिए कि उनके बस्ता देखें कि उनके डायरी में कौन काम मिला बा कौने विषय में काम मिला बा, गदारन का बुलाए के कम से कम रोज एक घंटा तो भैया पढ़ावत जा लिखावत जा और गदारन के दिमाग में ये भावना भर दिया कि जब तक वे पढ़िए ना तो अपने विकास के पथ पर अग्रसित ना हो पाई हैं। खेलें कूदें लेकिन टाइम से बैठ जाए पढ़े, कुछ यही मेर कह

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: पंचो देखें ऐसे इतनी गर्मी होती बात तो जहाँ तक हो सके तरल पदार्थ पिए, यानी मट्ठा लस्सी, घर ही में गाय भैंस है संझा के दही जमाए दें, सवेरे बढ़िया ओका बनाए के और जीरा भून के घरे में रखे रहें सीसी में ना, तो वहीं में नमक सेंधा डाल के दें अपने परिवार वाले का, स्वस्थ और निरोग रही हैं, खाना चाहे कमे खाएं। और एक साथे साथे भैया देखा यो ख्याल रखे एक बार कि अपने घरे में जो बूढ़ पुरानिया हैं ननहार गधारे हैं वह ना बताए पौते हमें कब पानी चाहिए, पानी की कमी शरीर में बिल्कुल न हो पावे, सबका समय समय पर जब अपना प्यास लागे तो उन्हों सबका वही लागे दिखाई देत रहे। और भैया देखा बिहान जौन बा किसान बाड़ी कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करी है सभी और भेंट वार्ता रही खरीफ में सब्जियों के उत्पादन हेतु तैयारी, एकरे बारे में बताई हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह। ती सब भैया बिहान सुनी है और हमें जौन बा घरे चले बेरिया होत बा, धीरे धीरे भैया तैयारी करी फिर कहियो यही कार्यक्रम में मिलब आप सबसे। तब तक के लिए उर्मिला बहन का देनमती, जय हिंद।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं को पता है कि सुबह 7:15 और शाम 7:15 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रमों का विवरण। तो आइए सबसे पहले जान लें आज के शेष कार्यक्रमों में क्या कुछ है खास। रात्रि 8:15 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। रात 9:15 का वक्त होगा महफिल गजल का और 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। जुड़ने के लिए नंबर रहेगा 7376804090। और आइए आपको कल के अब कार्यक्रमों से अवगत कराएं। कल सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 का वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का सुर संगम और 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में कल चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसक बेंगलुरु से आए अयोध्या आए शशिकांत शर्मा द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए गए विभिन्न संस्मरणों पर आधारित सदक हुसैन की गई खास बातचीत सुनवाई जाएगी। कल सुबह 9:00 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम बातें आसपास की। दोपहर 12:30 पर होगा लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग और दोपहर 1:00 से फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:30 पर हमारे स्टूडियो से ही फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। वहीं दिन में 2:00 से गैर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीतांजलि पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम नारी जगत के अंतर्गत सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो सहेली और इसमें बहने चर्चा करेंगी जल संरक्षण में बहनों की भूमिका विषय पर। सजीव बात करने के लिए स्टूडियो का टेलीफोन नंबर वही 7376804090। और कल शाम 5:00 से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा गोवा राज्य स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। हमारी धरोहर के अंतर्गत गोवा के चर्च और कॉन्वेंट और आर्थिक जगत सेगमेंट में मानव विकास सूचकांक की जानकारी के साथ फिल्मी गीतों का होगा प्रसारण। इसी कार्यक्रम में आप साक्षी दुबे की वार्ता सुनेंगे जिसका विषय रहेगा युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली। शाम 5:30 से लोक संगीत, 6:10 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी, 6:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के और शाम 6:45 से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। डॉक्टर आशीष कुमार सिंह से आलोक कुमार गुप्ता की बातचीत सुनवाएंगे जिसका विषय रहेगा खरीफ में सब्जी उत्पादन हेतु तैयारी लोकगीत। इसी कार्यक्रम में बाजार भाव और मौसम का हाल भी जानेंगे आप। कल रात 8:30 पर पार्श्व गायिका आशा भोसले पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार से ये 8:15 से आप सुनेंगे। 9:15 से महफिल गजल, 9:30 से हेलो अयोध्या का प्रसारण होगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
5: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
4: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
5: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
6: विदेश के किसानों

0: के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खिलानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में बने माँ भगवती के मंदिर के

0: शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आपको याद दिला दें कि 8:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 से 10:30 रात तक हेलो अयोध्या सजीव फोन इन कार्यक्रम। फिलहाल आपको लिए चलते हैं मुंबई केंद्र, जहां आपसे लेकर 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र मेहता की गाई इस गजल के साथ कर रहे हैं। कलाम बशीर भट्ट का है, संगीत साहिद हुसैन भूरे का।

0: अभी आपने रीता गंगोली की आवाज में ये गजल सुनी, कलाम मुमताज मिर्जा का था, संगीत जयदेव का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित कर

0: करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं प्रद्युमन शर्मा की आवाज में ये गजल। कलाम राजेश जौहरी का है, संगीत प्रद्युमन शर्मा का।

0: सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है? मैंने क्या किया है?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या अर्ज है?
1: अजी तुमने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोचकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में, पहचानना मुश्किल हो जाता।
0: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा। अरे मां कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: क्या यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, सुनना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही हैं और बहू से छुटकारा पा रही हैं।
1: हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
0: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, बकार।
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
0: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी, तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो।
1: क्या बहू को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल? क्या मतलब?
0: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा। तो फिर ये बताओ, माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में। अच्छा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
1: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के डैडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
0: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी।
1: हाँ बोलो।
0: बात तो सुनती जाओ। हाँ, हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
1: हाँ ये तो सभी को पता है।
0: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा। अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा। दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार। हाँ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं, उससे प्यार करती हो।

0: जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
1: अरे क्या तरकीब है।
0: अरे लो अब बहू जी आ रही है।
2: हाय पिताजी।
0: क्यों बहू अब क्या हुआ?
2: क्या नहीं हुआ जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
0: अरे बेटी रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
2: आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माताजी क्यों नाराज हो रही हो तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा बहू होकर तुम्हारी ये मजाल मुझसे पूछती है क्या बात है।
3: अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप भी तो कुछ नहीं करते।
0: अरे मैं क्या करूं बेटा तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख 25 साल से उसे झेल रहा हूं। ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति। लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
2: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
0: अरे बेटी तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
2: आपका मतलब है?
0: अरे ठीक समझ रही हो? बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
2: नहीं ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती है?
0: क्यों नहीं जला सकती? वक्त बदल रहा है जमाना बदल रहा है।
2: पिताजी जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
2: नहीं पिताजी मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी मुझे फांसी हो जाएगी।
0: इसका मतलब है बहू तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो
2: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल। क्या मतलब?
0: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
2: अच्छा?
0: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
2: अच्छा तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे। उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
2: अच्छा ओह माय गॉड फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर कितनी पार्टी रखा देती हूँ। मैं 1 घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कितनी पार्टी अटेंड कर रही होंगी उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो। हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
2: हाँ ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
2: हाँ पिताजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती उससे प्यार करना शुरू कर दो।
2: प्यार?
0: हाँ सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
2: प्यार सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
2: अच्छा ठीक है पिताजी।
4: राधे श्याम राधे श्याम सीताराम।
2: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
4: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी,
5: आई माता जी।
2: जी माता जी।
4: बहू कहाँ थी तू?
2: मैं यही तो थी माता जी।
4: बेटी तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
2: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
4: बहू तू ठीक तो है ना?
2: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
4: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या?
2: क्या क्या कहा माता जी? चक्कर?
4: कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं, बैठ बैठ। चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
2: चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
4: आएंगे बेटी आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
2: 6 महीने शादी को हो गए तो क्या हुआ माता जी?
4: वो
2: अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
4: मैं मुझे क्या हुआ है?
2: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
4: मेरे घुटने? घुटने क्यों कांपेंगे?
2: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है। लाइए माता जी मैं आपके घुटने दबा।
4: नहीं नहीं बहू रहने दो रहने दो।
2: लाइए ना माता जी लाइए।
4: अच्छा बहू रानी तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
2: मेरा बस

0: कानों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो।
1: क्या कहा बेटी?
0: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
1: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे।
2: मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
0: माता जी आपने कुछ कहा?
1: नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
0: कथा?
1: जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
0: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस पुड़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है।
1: क्या कहा बहू तुमने? कुछ
0: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं फिर भी आप अच्छी बनी हैं, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
0: बहू
1: जी एक बात बताओ
0: जी,
1: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
0: जी हाँ।
1: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
0: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
1: अच्छा?
0: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
1: है। हाथ पकड़ लेती है? हाय मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
0: माता जी मेरा भी।
1: बहू मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? चल ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
0: माता जी
1: ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
0: ये क्या किया आपने माता जी? ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, लगता है शायद
0: शायद क्या माता जी,
1: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बहू
0: ये क्या हो गया है आपको, एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
0: माता जी मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
0: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें जलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है। बहू
0: हाय हाय माता जी मुझे भी माफ कर दीजिए। माता जी मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको जलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है?
3: किसी को नहीं जलाया।

ये थी झलकी एक दिन का प्यार. इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने. आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे.

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे ये झलकी हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के अंतर्गत एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9849561329 व 9682075221।
0: प्यारे सुनने वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत गुंजन में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल एक हिंदुस्तान के बड़े शायर, मशहूर शायर बशीर बद्र साहब हम सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी शायरी, उनके अल्फाज, उनके जज्बात हम सबके बीच हमेशा के लिए अमर हैं। आइए उन्हीं के चंद शेरों के साथ आज के इस गीत गुंजन प्रोग्राम को सजाते हैं। गाने हम आपको फिल्मी सुनाएंगे, शेर बशीर बद्र साहब के सुनाएंगे। सबने सुना होगा ये मकबूल शेर कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। और शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

शेर है बशीर बद्र साहब का कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: बशीर बद्र के शेरों के साथ फिल्मी गीतों की महफिल जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हेलो
4: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: प्रोग्राम गीत गुंजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लीजिए बशीर बद्र साहब के चंद शेर और उसके बाद एक प्यारा सा नगमा किशोर कुमार की आवाज में। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और शेर है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।

बशीर बद्र साहब का शेर है कि अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो वो खफा ही लगे। और एक और शेर लीजिए कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

और आखिरी नगमे से पहले चंद शेर और आप तक पहुंचा दें। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे, खुदा ऐसे इरफान का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी भी ज्यादा सफाई ना दे। और शेर है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। और जिंदगी तूने मुझे

सब्र से कम दी है जमी। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और आखिरी शेर एक और पढ़ देते हैं कि इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ समाप्त हो रहा है फिल्मी गीतों का ये सफर गीत गुंजन।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के FM अयोध्या केंद्र से। हमारे कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। रात के 8:45 होने जा रहे हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार संध्या।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है।

0: हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: प्रोग्राम महफिले गजल में आप सभी का इस्तकबाल करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं पहले गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
0: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
0: कॉल करें 6386907006।
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: मछली मंडी, न्यामा, अयोध्या।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
3: प्रोग्राम महफिल गजल में आपका फिर से इस्तकबाल है। लीजिए सुनिए मिताली सिंह की आवाज में ये अगली गजल।

0: आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। रात के 9:30 में है, वक्त है आपके पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का। तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सा प्रोग्राम।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है आपका अपना रेडियो दोस्त सदक। तो आज मैं हूं आपके लिए तैयार भाई, आपके दिलचस्प बातों को शामिल करने के लिए और आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचाने के लिए। तो देर किस बात की, डायल कीजिए 7376-8040 नंबर को, जिसे हमारे एक जाने पहचाने श्रोता ने डायल कर दिया है। हेलो, जय सिया राम। अनसुईया दास जी, स्वागत है आपका। कितने दिन बाद आज इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं आप?
5: अयोध्या जी प्रमोद मन रघुनाथपुर आश्रम से बोल रहा हूँ, अभी गांव में हूँ।
0: अच्छा, अभी गांव में है, तो गांव का पता बताइए फिर, क्यों अयोध्या का पता बता रहे हैं? वहीं से बताइए जहाँ पे आप।
5: मध्य प्रदेश रीवा जिला गुड़ कटरा मोहल्ला से बोल रहा हूँ
0: जी। ये हुई ना बात, अनसुईया दास इस बार अयोध्या से नहीं रीवा मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।
5: मध्य प्रदेश गुड़ कटरा मोहल्ला।
0: गुड़ कटरा मोहल्ला, ओके
5: जी।
0: तो जरा बताइए इसका नाम। अनसुईया भाई,
5: बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है आज
0: जी। मैं तो कई महीनों बाद मेरी शायद बात हो रही, लेकिन प्रोग्राम में आप कितने समय पहले जुड़े थे इससे पहले?
5: अभी एक महीना हो गया, एक महीना।
0: हाँ, अच्छी बात, चलिए बढ़िया, एक महीने का अंतराल अच्छा है। आप हमारे नियमित श्रोता, आप डेली प्रोग्राम सुनते हैं हमें अच्छी तरह से पता, और आप ब्लाइंड है हमें पता है, आप देख नहीं सकते। तो अनसुईया जी ये बताइए, आपके गांव का नाम गुड़ कटरा है, ये गुड़ कटरा नाम कैसे पड़ा?
5: नहीं, कटरा मोहल्ला नाम मेरा का, कटरा मोहल्ला।
0: अच्छा, कटरा मोहल्ला, ओके। तो कौन सा गाना सुना रहे हैं सबको आप?
5: दाता पिता सुना दी सर।
0: कौन सा
5: मेरे आपकी कार्यक्रम मेरे गांव में सुनाई नहीं देता, आपके चल ही नहीं रहा।
0: क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा, उस पर सुनिए ना, न्यूज ऑन एयर ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग तमाम प्लेटफॉर्म है लाइव स्ट्रीमिंग के, 4-5 किसी से भी सुन सकते हैं।
5: भारती चलता मगर कचरा मक्की है और कचरा नहीं चलता।
0: नहीं, न्यूज ऑन एयर ऐप लगाइए और सुनिए आराम से मोबाइल में, है ना। वेव्स ओटीटी ऐप पर भी मिल जाएगा, न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी मिल जाएगा, है ना।
5: नहीं सर, हम छोटा मोबाइल चलाता हूँ।
0: अच्छा,
5: बटन वाला चलाता हूँ।
0: कोई बात नहीं, बाकी लोगों को सुनाई पड़ेगा। लाइव रेडियो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, 5-6 प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल। तो दाता फिल्म में कौन सा गाना सुन रहे हैं आज आप?
5: सुना दीजिए
0: काबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है।
5: जी।
0: बात तो सही है, चलिए लाइन पे आप आए और आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। सुनिए
5: जय सियाराम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल गजल FM आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रमों को

0: भाई ये प्यारा सा नगमा चला हमारे श्रोता अनसुईया दास जी की पसंद पर, और आइए जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो हेलो
1: सर।
0: आदित्य जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अयोध्या।
0: अयोध्या से? अच्छा भाई, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं आज आप? बॉर्डर फिल्म का कह रहे थे आप।
1: हाँ।
0: तो बॉर्डर में कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सदे से आते
0: हैं। वाह भाई वाह। तो कितनी कितनी उम्र है आपकी आदित्य?
1: 8 साल।
0: 8 साल के हैं। ये पिक्चर देखी थी आपने, बॉर्डर पिक्चर देखी है कि नहीं आपने?
1: हाँ सर, हमको दिखता नहीं है।
0: अरे आदित्य से मेरी बात हो रही है, 8 साल के हैं और आदित्य को दिखाई नहीं पड़ता है वो। तो कैसे बचपन से आप नहीं देख पाते हैं कि बाद में आंख खराब हुई? बचपन से नहीं देख पाते हैं। और आपके घर में कौन कौन है आदित्य आपके साथ?
1: जो हमारे दो भाई हैं।
0: अच्छा, और मम्मी पापा?
1: सब जी हैं।
0: सब लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं आदित्य?
1: सर जी।
0: अच्छा, कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं?
1: बचपन में किया सेंटर इलिनाका के पास।
0: अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई में मन लग रहा है आपका?
1: यस।
0: बहुत अच्छा आदित्य, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और गाना भी आपने बहुत अच्छा चुना है। आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं रेडियो पर, सुनिए सबके साथ, ठीक है? फिर हमें फोन कीजिएगा, थोड़ा समय रुक कर फिर फोन कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्ते।

0: और आइए भाई जुड़ते हैं अपने प्रोग्राम के तीसरे श्रोता से। हेलो,
1: आपका नमस्ते।
0: नमस्कार, अर्जुन कुमार सोनकर जी की आवाज है ये?
1: जी, अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना देवकाली रोड, अयोध्या।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सोनकर जी, आप हमारे बड़े ही नियमित श्रोता हैं। कितने दिन बाद आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सर आप?
1: सर आपको रविवार हमारी बात हुई थी, कॉल कर गई, तब से कहाँ लगी।
0: हाँ, रविवार को हमारी आपसे बात हुई और वो बात मेच्योर नहीं हो पाई और ऑन एयर नहीं हो पाए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग की किस्मत अच्छी नहीं होती है और आज हम लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या करते हैं, हमारे सभी श्रोता जान चुके हैं। आज गाना कौन सा सुन रहे हैं ये बताइए आप।
1: सर दूसरा आदमी का गाना सुनवा दीजिए।
0: आंखों में काजल जी, बिल्कुल सुनवा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप?
1: अरे क्या चाहेंगे, सब ठीक ठाक है सर, बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मौसम ये जो अचानक से करवट ले रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर?
1: अरे मौसम तो आप पर बहुत अच्छा है,
0: बहुत है आज। हाँ, अचानक से कभी बारिश हो जा रही है, तूफान आ जा रहा है।
1: हाँ, बारिश तो सुबह हुई है सर।
0: जी जी जी, तो मौसम थोड़ा सुहावना हो गया है ना।
1: मौसम बहुत बढ़िया सुहाना हो गया है, बहुत अच्छा हो गया।
0: चलिए तो लता किशोर की आवाज में युगल स्वर में ये गाना सुनिए, फिर आप सबको सुनवाइए। शुक्रिया
1: जी सर।

0: और भाई नाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और श्रोता। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ सर जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से आपने फोन लगाया।
1: नाका हनुमानगढ़ी से मरी माता मंदिर से बोल रहे हैं, नाका से चंचल पुजारी दास।
0: अच्छा मेरी पुजारी जी से बात हो रही है मरी माता मंदिर से, क्या बात है
1: जी।
0: चलिए भाई जय माता दी, कैसे हैं आप।
1: जय माता जी, बहुत आपका आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है।
0: जी जी बिल्कुल माता जी का आशीर्वाद है।
1: बस हम चाह रहे हैं बस माता जी के गाना सुनाइए, उसके बाद आप मंगल को बड़े मंगल को आइए, प्रसाद आपके द्वारा से उद्घाटन हो जाए।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगातार भंडारों का दौर चल ही रहा है, मंगलवार को
1: जी
0: प्रत्येक बड़े

0: लगातार भंडारों का दौर चल ही रहा है मंगलवार को
1: जी,
0: प्रत्येक बड़े मंगल को, और आपने आमंत्रित किया, हम हर्षित हैं बहुत, आपका धन्यवाद।
1: चलिए, हमारे हमारे के ऊपर वाले माता जी का कृपा है, 365 दिन में भंडारा रहता है, जब कोई त्योहार मचाना रहता सारे त्योहार में भंडारा रहता है।
0: वाह क्या बात है, ये तो
1: त्योहार बचा रहता है। पेपर मार्क्स करके क्या आप देखिए, पेपर उठाइए, नाका मरी माता मंदिर में भंडारा हुआ, पेपर जब चाहे जब उठाइए आप।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बस अभी आपकी सब लिए आरटीओ ऑफिस का प्रशासन आए थे, इसके पहले एसपी सिटी आई थे, इसके पहले विधायक जी आए थे, अमित सिंह आए थे, अभेश सिंह आए थे, सारे लोग आए थे।
0: जी जी जी जी,
1: हमारे के कप्तान तन सब आते जाते हैं, सारे लोग सांसद विधायक सब आते हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए सर आपकी पसंद पर गाना
1: चाहते हैं, आप आइए बस, आपके द्वारा से भंडारा का उद्घाटन कर दिया जाए।
0: चलिए हम आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पसंद का गाना भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जय माता दी,
1: धन्यवाद, जय माता की।

0: माँ शेरावाली का ये गीत बजाओ। और हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं रायपुर मेला जहां लगता वहां से शिवकुमार सिंह जी हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे हम बात करेंगे इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: भाई मन का रेडियो बज रहा है FM आकाशवाणी अयोध्या, और अपने मन की बात करने के लिए हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ेंगे। हेलो
3: जी सर,
0: नमस्कार सर, अपना नाम फिर से हमारे श्रोताओं को बताएं और अपना कहां से आप बात करने भी बताएं।
3: कुमार सिंह हमारा नाम है, रायपुर मेला के बगल एक गांव हुसेपुर पड़ता है, वहीं से बोल रहे हैं।
0: हुसेपुर गांव से हैं। रायपुर का मेला बड़ा मशहूर है शिव कुमार जी।
3: जी जी जी,
0: कब लगता है हमारे श्रोताओं को बताइए, और उस मेले में क्या क्या होता है भी बताइए।
3: में लगता है सावन में।
0: सावन में तो अभी तो लगा था मेरे ख्याल से ना, अब तो लंबा समय है बाने में।
3: जी, अब 2 महीने का मेला रहता है।
0: अच्छा, सावन से चलकर 2 महीने तक चलता है।
3: लकड़ी का सामान बहुत बिकता है।
0: हाँ, मशहूर है वो लकड़ी के सामानों के लिए खास तौर से, बाकी तो सारी चीजें भी रहती हैं वहाँ, हर चीजें मिलती है।
3: झूला उला बहुत आता है, बच्चे आनंद लेते हैं।
0: झूले के अलावा और भी बहुत तरह की दुकानें लगती हैं, कपड़े की भी है ना, और सामान भी बिकते
3: हैं। सोफा सेट है, सब तमाम दुकानें लगती हैं।
0: चलिए जी, बिल्कुल। तो क्या करते हैं
3: सामान
0: सब मिलता है, तो जो मेले में होता आमतौर पे। ये बताइए क्या करते हैं आप शिव कुमार जी।
3: हम तो मैग्नेट थेरेपी से फ्री इलाज करते हैं और खेती करते हैं।
0: अच्छा, मैग्नेट थेरेपी से आप इलाज भी करते हैं।
3: जी,
0: तो बड़ी बढ़िया, ये तो भाई एक अलग ही थेरेपी है। चलिए, तो जिनके गर्दन अर्दन में दर्द होती है, सर्वाइकल की समस्या होती है, उनका भी इलाज कर देते हैं मैग्नेट से आप।
3: जी, सबका होता है।
0: अच्छा, चलिए,
3: बीमारी का इलाज
0: है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो आप ने कभी कभी फिल्म का गाना सुनना चाहा ना, लता जी की आवाज में।
3: जी,
0: सुनवाते हैं हम आपको। ठीक है शिव कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर जुड़िएगा कार्यक्रम में। आपका गाना जा रहा है रेडियो सेट पर। नमस्कार नमस्कार।

0: भाई इस प्यारे से नगमे के बीच आइए जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो
0: जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाया आपने, बताइए सर।
1: राजेंद्र निषाद सर बोल रहे हैं, ग्राम सभा दसौली थाना पूरा कलेंगे अयोध्या।
0: वाह भाई, राजेंद्र निषाद जी से मेरी बात हो रही है, तो
1: जी सर
0: क्या करते हैं राजेंद्र जी आप?
1: सर खेती बाड़ी का काम करते हैं सर।
0: अच्छा, तो ये जो मौसम
1: हमारी बिटिया कई दिन से फोन लगा रही थी सर, लगा नहीं अभी लगा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बार फोन लग रहा है क्या आपका?
1: जी सर पहली बार फोन लग रहा है, हमारी बड़ी बिटिया प्रीति निषाद, छोटी बिटिया बबली निषाद।
0: वाह भाई वाह, तो बड़ी खुशी की बात है जब हमसे कोई ऐसे श्रोता जुड़ते हैं जो पहली बार जुड़ते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। सच बताएं,
1: कई साल से सर ट्राई कर रहे थे, पहली बार फोन हमारा लगा हुआ है। आज बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं दूसरी मोबाइल पे आपका प्रोग्राम, जिसके दूसरी मोबाइल से लगाए थे सर।
0: जी जी जी राजेंद्र भाई, मैं सच बताऊं आपसे ज्यादा खुशी हमको हो रही है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे हजारों श्रोता हो गए हैं ना, जो घूम कर वो लोग आते हैं, लेकिन जब कोई नया सदस्य जुड़ता है तो बहुत खुशी होती है। सच बताए
1: सर, बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम हम नियमित देखते हैं, हमारे बच्चे भी पूरे मोबाइल पे आपका प्रोग्राम सुनते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके सर, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं।
0: देखिए राजेंद्र भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे भी रेडियो सुनते हैं, कि रेडियो बड़ा अच्छा माध्यम है सूचना शिक्षा और ज्ञान का, है कि नहीं? तो आप जरूर सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए और लोगों को भी जोड़िए आकाशवाणी से। साफ सुथरे अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। साजन फिल्म में कौन सा गाना सुनना चाहे आपने? आपने गाने का बोल नहीं बताया था।
1: जी सर कोई भी गाना सुना दीजिए सर।
0: जिए तो जिए कैसे बिना आपके, कि तू शायर है मैं तेरी शायरी, कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, कौन सा जोन सा रहिए? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कौन सा सुना दे?
1: वही सर, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम।
0: चलिए सुना देता हूँ मैं आपको, बहुत शुक्रिया, फिर जुड़िएगा, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: और आइए श्रोताओं जुड़ते हैं अपने एक सीनियर श्रोता से इस प्रोग्राम में। हेलो हेलो।
1: हाँ सर।
0: नमस्कार सुमन जी, हमें बात कराइए अपनी सासू माँ से जिनसे हमारी बात हो रही थी ऑफ एयर।
1: बात
0: कराइए।
1: बात
0: जी। माता जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अब आपका नाम जान सकते हैं हम? क्या नाम है आपका?
1: हाँ हाँ बेटा जान सकते हैं।
0: अच्छा, कितनी उम्र हो गई है आपकी?
1: 65 साल हो गया।

0: अरे वाह, तो रेडियो आप पहले भी सुनती रही होंगी मैं समझता हूँ, जब आप बचपन में, है ना?
1: हाँ बेटा, बचपन में सुना था ना, अभी सुनीता है।
0: तो बचपन की कुछ रेडियो सुनने की याद है आपके पास की? क्योंकि तब टीवी और मोबाइल तो था नहीं, है ना, बहुत पहले, तब तो सब लोग,
1: बेटा बहुत पुरानी पुरानी पहले सुने हैं ना।
0: हाँ,
1: हाँ जैसे पुरानी पहले पहले पुरानी जो फिल्म अब नहीं चलता है, नई नई फिल्म चलता है पहले,
0: नहीं ऐसा
1: बहुत पुरानी ये जैसे
0: जी।
1: पान बनाने वाला
0: हाँ, नदिया के पार आप सुनना चाह रही हैं।
1: उसके बाद में ये जो नदिया पार ये हमारे आए,
0: जी जी
1: अरे ये जो बहुत गाना रहा, अब तो सब पुराना पुराना गाना बंद हो गया।
0: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, जब आप पसंद करेंगी तो हम लोग तो पुराने गाने भी सुनाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो आप कहेंगी वो हम सुना देंगे, इसीलिए बैठे हम
1: हाँ
0: लोग। चलिए, आपसे बात करके माता जी बहुत अच्छा लगा। सुमन से तो मुझे लगता है आकाशवाणी से बातें करती रहती हैं आपकी बहू जी, है ना?
1: हाँ बेटा, हमें तो पहली बार बहू में बात करवाई।
0: बहुत अच्छी बहू है आपकी, देखिए आपको रेडियो से बात करा रही है, और अपनी आपकी
1: हाँ
0: पसंद का गाना भी वो कह रही है, जो मम्मी को पसंद है वही गाना मुझे सुनना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम गाना बदलेंगे नहीं।
1: कोनो भक्ति की लाइन माँ बेटा सुना, जो भक्ति की लाइन माँ
0: बतावे कौन सा आप गाना बताइए हम राधे, माँ शेरवाली सुना दे।
1: अच्छा
0: ठीक, हम भक्ति फिल्म का सुना दे रहे हैं आपको, एक मर्द
1: हाँ
0: मर्द फिल्म का गाना हमको बहुत पसंद है, माँ शेरावाली वो माँ शक्तिशाली, सुनिए तो ये सुना दे, माँ शेरावाली वाला।
1: हाँ सुना दो बेटा सुना।
0: चलिए माँ शेरावाली सुना देता हूँ मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, फिर फोन कीजिएगा, इनसे कहिएगा फिर से फोन लगाएंगी, फिर बात करेंगे, ठीक है?
1: आपके
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: वाली। भाई प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं हमारी श्रोताओं की पसंद पर, देखते हैं अगले कॉलर कौन है और कौन सा प्यारा गीत लेकर हाजिर होंगे। हेलो।
1: हेलो
0: जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं अबराज अहमद बोल रहा हूँ, लालबाग फैजाबाद से।
0: अरे वाह, शहर फैजाबाद से लालबाग से फोन लग गया है अबराज अहमद साहब का। क्या करते हैं सर आप?
1: मैं शिक्षक हूँ, बेसिक एजुकेशन में।
0: वाह, मेरी एक शिक्षक से बात हो रही है और बहुत खुशी होती है जब हम किसी टीचर से जुड़ते हैं। एक यदुनाथ जी हैं, वो भी अक्सर जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, शिक्षक हैं नाका से, और आज आप जुड़ रहे हैं अबरार भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाने के अलावा क्या कुछ शौक हैं आपके?
1: जी बस शाम को मन होता है कि सांग मतलब
0: सुना

0: सुना जाए, वो जो मतलब पुराने गाने हैं।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया,
0: वो सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है।
1: बेशक,
0: तो यही करता हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटा समय दो, गाना सुनो कुछ पुराने काम को।
1: भाई आजकल देखिए, जो सरकारी टीचर का भी काम है वो बड़ा कठिन हो गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसमें हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर शाम के वक्त थोड़ा सा संगीत में माहौल हो और हम एक बार अपने मस्तिष्क को संगीत के माध्यम से रिबूट करें तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि नहीं?
0: जी जी जी जी जी,
1: क्योंकि जब हम
0: आज मन हम लोगों का
1: हाँ
0: थोड़ा सा उदास हो गया है, वही जो बीपी वाला मामला आ गया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। आप लोग इतने योग्य शिक्षक हैं, हमारे बेसिक एजुकेशन में सबसे अच्छे सबसे टैलेंटेड टीचर्स हैं, जरूर वो कोशिश करके चीजों से आगे बढ़ेंगे। आपकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। तो सर, आपने धड़कन फिल्म का गाना सुनना चाहा है?
0: जी, धड़कन फिल्म का कोई भी सॉन्ग बजा दें।
1: बेशक, इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इस प्यारे से गीत को चुनने के लिए आपको खास तौर से शुक्रिया। चलिए आपकी पसंद का गाना पहुंचा देते हैं अब्रार भाई, बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, थैंक यू,
1: शुक्रिया।

0: धड़कन फिल्म के इस प्यारे से नगमे की धड़कन मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि अगला श्रोता हमारे पास पहुंच रहा है। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रही है?
1: नमस्ते सर, मेरा नाम रितिक है।
0: आपका नाम है रितिका?
1: हाँ मेरा नाम रितिका अहमद, मेरा नाम निक नेम रीति है मेरा।
0: रीति आपका शॉर्ट नेम है जो आपके दोस्त आपको बुलाते हैं सब लोग ना, रीति?
1: दोस्त नहीं, घर वाले भी बुलाते मुझे।
0: अच्छा घर वाले, तो आप तो खुद भी
1: नाम बुला सकते हैं।
0: हाँ मैं रीति बुलाऊंगा। मैं ये कह रहा था आपके घर वाले बुलाते हैं तो आपको ये नाम खास पसंद है क्योंकि आपने रेडियो पर भी यही नाम बताया, जो बाकी लोग बुलाते वो नहीं बताया ना?
1: हाँ नहीं मुझे सब लोग यही बुलाते हैं, मतलब मेरे आप लोग मेरे घर वाले जो मेरे दोस्त हैं वो अलग अलग लवली या फिर पता नहीं कौन कौन से नाम कर देते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट नाम रीति है।
0: अरे वाह, तो चलिए क्या करती हैं रीति आप?
1: मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और मैं इस वक्त 12th क्लास में हूँ।
0: किस क्लास में हो?
1: 12th में, इंटर में।
0: अच्छा 12th क्लास में, ओके। आवाज थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ आ रही है। चलिए तो क्या आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बढ़िया अच्छी आवाज है, तो किस फिल्म का गाना सुनेंगे आप?
1: सर गाना तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने बस आपसे तो

0: जाता रहा हूँ, कहाँ से बता दीजिए कि आरजी कैसे बनते हैं और यहाँ पे मैं मतलब कैसे इंटर्नशिप ले सकती हूँ, मुझे ये सारी चीजें जाननी, मुझे कुछ बताता नहीं, यूट्यूब पर मुझे मिलता नहीं है।
1: मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, हमारे जितने सुनने वाले उनको भी पता चल जाएगा है ना कि आरजे कैसे बनते हैं। देखिए आरजे बनना बहुत आसान है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जैसे बोलती हैं चहक कर ऐसी प्यारी सी आवाज होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है?
0: ओके सर।
1: ग्रेजुएशन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट के आरजे सिस्टम में आना है, अगर प्राइवेट्स में जाना है तो मुझे नहीं लगता वहाँ क्वालिफिकेशन की क्या सिस्टम है, हो सकता है ट्वेल्थ के बाद ही ले लेते हो वो लोग, है ना। लेकिन हमारे यहाँ अगर आकाश आपको गवर्नमेंट वाले उससे जुड़ना है एफएम से, तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है?
0: और लेकिन ये बताइए मुझे, इसको अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट होती है या फिर जाकर के कोई फॉर्म भरना पड़ता है या फिर कोई एग्जाम देना पड़ता है, मुझे ये नहीं समझ में
1: आता। अगला स्टेप मैं बता रहा हूँ, उसके बाद टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट्स रेडियो के जरिए होते हैं कि हमारे यहाँ आरजेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी हमारे आकाशवाणी से कुछ दिन पहले निकला था कि हमें जरूरत है उद्घोषकों की, है ना, तो वहां से वांटिंग निकलती है। हमने कहा रेडियो से इसकी सूचना प्रसारित की जाती है, रेडियो से।
0: ओके,
1: तो जो लोग रेडियो लिसनर हैं वही जान पाते हैं, है ना।
0: ओके,
1: ये भी एक कमाल की बात है, क्योंकि जो सुनेगा वही तो बोल पाएगा रेडियो की तरह।
0: यस सर,
1: है कि नहीं? तो इसलिए इसको रेडियो से ही, रेडियो से ही प्रसारित करते हैं, और फिर उसमें आपकी एक रिटन एग्जाम होता है, एक ऑडिशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप रेडियो से बोलने लगते हैं। इतना आसान
0: है। मतलब जैसे जो मतलब अनाउंसमेंट होती है उसको हम लोग सुनते हैं, फिर रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, फिर हमारा ऑडिशन लिया जाता है, उसके बाद हम सिलेक्ट होते हैं, राइट?
1: एग्जैक्टली, यही प्रोसेस है, ठीक है ना।
0: ओके, थैंक यू सो मच सर।
1: मोस्ट वेलकम। गाना बता दीजिए कौन सा सुनेंगी। अच्छा, नदिया के पार जरूर, तो मम्मी पापा को भाई डेडिकेट करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी
0: बात है। सर जी, मैंने कितनी बार कॉल लगाया मगर मेरा कॉल कभी नहीं लगता था, पहली बार लगा मेरा कॉल, बहुत बहुत खुशी
1: है। चलिए, आपसे ज्यादा हम खुश हैं, हम बार बार कहते हैं जब कोई नया श्रोता हमसे जुड़ता है तो हमारी खुशी बहुत दोगुनी हो जाती है। चलिए आइए, आपकी पसंद का गाना जा रहा मम्मी पापा की पसंद पर। शुक्रिया रिति,
0: थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।

0: पसंद पर सुना उनके मम्मी पापा की पसंद पर, और एक अंतराल लेंगे उसके बाद। मया बाजार से हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं, उनको हमने लाइन पर होल्ड किया है और इस एड ब्रेक के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे।
1: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: धूप में निकलान करो रूप की रानी।
5: उफ, तपती दोपहर और झुलसाती गर्मी, ऊपर से हर साल बढ़ती हीट वेव का खतरा।
6: सावधान, लू जानलेवा हो सकती है, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
7: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के झीले और सूती कपड़े पहनें, धूप में छतरी टोपी या गमछा जरूर लें, साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को भी पानी दें।
5: हीट वेव से डरे नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
7: लू से बचें, जीवन

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आप सभी का फिर से स्वागत है। 7376 80 40 90 ये नंबर आप डायल कर सकते हैं। अभी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त, लगभग 11 मिनट का वक्त बाकी है हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप भी जुड़िए। हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
8: सर, नमस्ते सर।
7: नमस्कार, अपना नाम बताइए सर, कहाँ से फोन लगाया आपने?
8: सर मैं चंदन राजभर बोल रहा हूँ।
7: जी चंदन जी,
8: ग्राम कुशागंज पोस्ट बाकरगंज जिला अयोध्या से बात कर रहे हैं सर।
7: वाह भाई, तो क्या करते हैं आप सर चंदन जी?
8: सर अभी तो सर पढ़ाई चल रहा है हमारे।
7: पढ़ाई चल रहा। अच्छा चंदन भाई, अभी जब गाना जो बज रहा था आपके आने से पहले,
8: जी सर,
7: उसमें चंदन वाला नाम भी आ रहा था ना?
8: हाँ सर, हाँ।
7: सुन रहे थे कि नहीं आप गाना? वो
8: जी गाना सुन रहे थे।
7: तो वही सुन के आपका मन कहा कि चंदन बात भी कर लें क्या प्रोग्राम में?
8: हाँ सर, हमने कहा जो हमारा गाना बज रहा है सर, हम भी बात करते सबसे।
7: बहुत अच्छी बात है ये। तो पढ़ाई कर रहे हैं आप, और क्या शौक रखते हैं पढ़ने के अलावा?
8: सर बस तैयारी चल रहा है, अप्रेंटिस में मतलब फॉर्म डाल दिए हैं।
7: किस चीज की अप्रेंटिस?
8: और हमारा हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, और ITI है सर।
7: तो अप्रेंटिस ITI वाला आप कर रहे हैं ना?
8: जी जी, जैसे ITI कम्प्लीट हो गया है, इसके बाद सर अप्रेंटिस कर रहे हैं रेलवे के।
7: रेलवे की कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से सफल हों और एक अच्छी सी नौकरी भी हासिल कर लें अपने इस तकनीकी शिक्षा के साथ, है कि नहीं? तो आपकी पसंद का गाना पहुंचाएं फिर, अलका और उदित की आवाज में आपने सुना चुना है ये गाना, चांद के पार फिल्म से ना?
8: जी सर, जी जी।
7: सुनवाते हैं चंदन भाई, सुनिए।
8: ओके सर, ओके।
7: नमस्कार।

0: भाई हमें तो इंतजार होता अपने श्रोताओं का, हम इनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी सर नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से फोन लगाया आपने?
1: जी मैं डॉक्टर आरबी सिंह बोल रहा हूँ, अल्लाह ने जनपद शाहजहांपुर से।
0: शाहजहांपुर से डॉक्टर आरबी सिंह जी जुड़ रहे हैं। इससे पहले कब आप इस प्रोग्राम में जुड़े सर?
1: इस प्रोग्राम में
0: अच्छा हेलो अयोध्या में जो सुबह आता है उसमें आप जुड़ चुके हैं, इसमें पहली बार जुड़ रहे हैं शाम में है?
1: उसमें पहली बार बात आपसे हो रही है। आप ऐसा कौन बोल रहे?
0: मैं सदक बोल रहा हूँ, सदक हुसैन।
1: अच्छा
0: जी, तो डॉक्टर साहब किस तरह की डॉक्टरी करते हैं आप, किस तरह का इलाज?
1: जनरल फिजिशियन।
0: अच्छा जनरल फिजिशियन है। तो इस वक्त गर्मी का मौसम है और बीच बीच में बारिश वगैरह भी हो जा रही है, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए हमारे सुनने वालों को?
1: इस समय पहला बचाव लू से ज्यादा है, चल रही टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है।
0: जी जी,
1: तो इसमें
0: आपकी आवाज मुझे तो टूट टूट के मिल रही है, एयर पे कैसी जा रही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हेडफोन में मुझे टूट टूट कर आपकी आवाज मिल रही है, ब्रेक होकर
1: हमारे सही आ रही है।
0: हाँ तो अच्छी बात है, चलिए मुझे ही दिक्कत हो रही है इसका मतलब। तो ये बताइए किस फिल्म का गाना सुनिएगा आप, राजा फिल्म का कह रहे थे आप?
1: फिल्म का राजा है, किस फिल्म बनूंगी मेरा गाना।
0: वाह चलिए, तो आपकी पसंद का गाना पहुंचाते हैं सीधे, चार मिनट का वक्त बाकी है तो आप ये गाना सुन लें, चार मिनट, एक एड भी बजना है।
1: कुछ नाम

0: ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए सर। जी जी,
1: नाम
0: चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनिए,

वही एक घंटे की ये सारी कहानी यहीं तक खत्म हो रही है और आपका रेडियो दोस्त सदक अब आपसे चाहता है अनुमति कार्यक्रम हेलो अयोध्या से आपसे फिर होगी मुलाकात कल दिन के हेलो अयोध्या में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए अपने दोस्त को आप यहीं पर अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आज के इस हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया अश्विनी कुमार शुक्ला जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। FM एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां आपसे लेकर रात 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन जवानी

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी।

0: 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून।

0: प्यारा संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, जहां से प्रसारित हो रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम आकाशवाणी का यह अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनिए, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों

को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जीजी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।